सुनो शारदा 90.8 FM। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं। देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज भी जो हैं ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई। और उसको, क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है, चलो पकड़ते हैं।
0: हाँ, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली। हाँ, लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवद गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं, शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और उस कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया, तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: इस गाड़ी में जितना सुख दिया
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि बताएं। हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: देते हैं। अच्छा, हमने भी दिया है। जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को, पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके,
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी देके जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी
0: देकर।
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो अपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवल्स करना पड़ता।
0: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवद गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है। जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे कि तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं। इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जिसकी आप बात कर रहे हैं? हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में।
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवद गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इस ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन चाहिए था। और एक समय उन्हें चाहिए था और एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ। परंतु ये दूर नहीं हो पाते। प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास कर रहे हैं
0: या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी।
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद
0: जी
1: वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का।
0: जी।
1: तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे।
0: हुँ।
1: परंतु श्रीला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? श्रीला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया, आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
0: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है, कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ, क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम इस शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ, तो क्या ये सही होगा? तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में, लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा सा

0: और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, देखिए दो चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
1: जी,
0: या फिर यू नो भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं
1: फंस जाएगा। और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है जो हम मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
0: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
1: हाँ।
0: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह वॉक पे जाना, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना, केवल जीवा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा। तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
1: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये बुरा है,
0: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है।
1: हाँ।
0: जैसे कि जब टंकी में
1: हाँ।
0: पानी गंदा होता है
1: हाँ।
0: तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी यू नो टैंकर साफ करने तो नहीं जाते। हम क्या करते हैं,
1: फिल्टर लगा देते हैं।
0: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर से साफ पानी चालू करते हैं और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार रहेंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखित विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं।
1: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
0: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
1: जी।
0: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से मन को या दिल को जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है यू नो आप देखिए बॉलीवुड में भी या हॉलीवुड में भी लव जो होता है, प्रेम होता है
1: जी,
0: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा है। कहने का तात्पर्य है कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम
1: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
0: यस वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही प्रेम ही जो है पूर्ण है।
1: हाँ।
0: जब दो तरफा से हो जाता है तो उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है, मैं कुछ आपके लिए करता हूँ आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
1: ये बिजनेस हो गया।
0: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
1: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
0: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
1: जी।
0: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
1: जी।
0: यथा तथा वा विदधा तु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट डज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ
1: जी,
0: आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
1: समर्पण,
0: आप कुछ भी करिए मेरे
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: कितने
1: जी।
0: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राण नाथ
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: जब हम ऐसा कह देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
1: यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
0: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है और वो शुद्ध प्रेम

0: से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
1: जी,
0: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है।
1: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
0: यस। और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ।
1: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
0: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है।
1: जी।
0: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
1: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
0: ममता, ममता में प्रेम है।
1: जी जी।
0: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है,
1: जी जी,
0: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है।
1: जी जी।
0: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
1: निकल
0: जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर। वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है। ये माँ का प्रेम
1: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
0: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में। अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
1: निकल के सोच पाता है,
0: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है। जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है। भगवान का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का,
1: प्रेम का रिश्ता।
0: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। सेवा। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
1: साथ में रहेगी। बिल्कुल,
0: हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
1: जी जी। और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
0: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था,
1: घर था।
0: अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
1: जी
0: भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
1: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूँगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खास तौर पर, वो बहुत जूझ रहा है समस्या से। और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्ज़ाम्स के समय पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
0: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती है,
1: हो जाती है,
0: हमारे अंदर होती
1: है। जी।
0: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
1: बिल्कुल।
0: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकें। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे आपने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
1: जी,
0: अब 10-12-13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
1: जी,
0: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
1: जी हाँ। और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
0: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्हें कहा हम भी कीर्तन करना चाहेंगे। सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया।
1: जी जी।
0: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं? मैं कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते ये सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ? हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिए आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवद्गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसी आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए, ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। So, ये हम
1: अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
0: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का, तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी,
0: यही भक्ति योग है।
1: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी
0: जी।
1: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
0: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
1: जी
0: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवद गीता को अपना गुरु बना लें या मन को गुरु बना लें। मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवद गीता को गुरु बना के देखिए।
1: तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
0: यस, भगवद गीता 4th chapter में भगवान इसको कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी जरूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते रहेंगे दोबारा से। फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
0: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया। बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: मीठा बोलो।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। बड़ा ही खूबसूरत गाना है स्वर्ग फिल्म का, गोविंदा साहब के ऊपर वो फिल्म आया गया है, बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई। फिल्म का नाम आता है, गाने का नाम आता है, तो जहन में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जाती है। पिक्चर बनती है मुंबई, वो गढ़ है जहां लोगों की किस्मत बदलती है, जहां एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, यानी कि सबका एक संगम है। जब इस तरीके से मैंने एक छोटी सी रूपरेखा बना दी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ही शख्सियत मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है संदीप जी। बहुत बड़ा अनुभव है, आप पेशे से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और थिएटर एडुकेटर हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है जो आगे चलकर अपना नाम कर रहे हैं, इनका नाम कर रहे हैं। तो फाइनली सर, सुरुशादा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच गगन जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। सुनो शारदा 98.8 FM के सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक छोटी सी नाचीज हूँ, सेवा में आपके उपलब्ध।
5: क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई चीज मुझसे छूट ना गई हो, तो यही मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी शुरू हुई।
6: वैसे आपने सब कुछ बता ही दिया है, जर्नी को बताएं तो बहुत बड़ी जर्नी भी है और कह सकते हैं बहुत छोटी जर्नी भी है। जर्नी अभी चल रही है, अभी चलना सीख रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 98 में ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं अपने पापा के पास देहरादून में था और वहां पर एक एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी। मेरा फ्रेंड मुझे जबरदस्ती खींच के ले गया, क्योंकि मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था और छुट्टियों पर आया था। बस वो वर्कशॉप करी और वहां पर एक दिल को एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में ताउम्र करना चाहता हूं। बस वहां से मैंने सफर शुरू किया, पहले एक्टिंग को समझा, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, बहुत सारे प्लेस किए, फिर मौका मिला कि मैं NSD की TI कंपनी में जॉब कर सकूं। वहां से मैंने और फाइनेंस टच की सीखे, मैंने इसके नुआंसेस सीखे इसके मैंने, और वहां से मुझे इसकी कला का एक माहीन चीज मुझे समझ में आई। और मुझे वहां पर यह भी सिखाया गया कि टीचिंग क्या आर्ट है। बस फिर वहां से मैं मुंबई गया और मुंबई में मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और वहाँ पर भी मैंने थिएटर किया. मुझे मौका मिला FTI 2004 में, वहाँ पर फिर से एक्टिंग का कोर्स खुला था
5: पुणे
6: में
5: जी.
6: तो रवि बासवानी जी उस वक्त वहाँ के डायरेक्टर थे, तो मुझे मौका मिला कि वहाँ पर हर साल सिलेक्शन प्रोसेस के 4 दिन का वर्कशॉप हम डिजाइन करें और उसको कंडक्ट करें. तो 2004 से लेके 10 तक हम वहाँ पर हर साल जाते थे. तो बहुत अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में बिहाइंड द कैमरा काम किया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है
5: जी.
6: तो लाइव शोज, बिहाइंड द कैमरा, थिएटर, टीचिंग, सब चीजें एक साथ चल रही थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं सीखना चाहता था. फिर मुझे मौका मिला, मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा का क्रिएटिव हेड रहा.
5: ओह
6: जी,
5: क्या बात है.
6: शुरुआती में 2008-2009 में मैं उसका क्रिएटिव हेड था
5: जी.
6: मैंने उसमें भी बहुत कुछ, एक उसमें जो एक सिंप्लिसिटी थी
5: जी,
6: और उसके जो प्रोड्यूसर है असित मोदी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे. फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ये टीवी में कहीं स्टक कर रहा हूँ. मुझे अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, बिकॉज वहां पर बहुत चीजें जो हैं एक ढर्रे पे चल रही थी. ये किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे आगे और अभी सीखना था. तो फिर मैंने वहां से सर को बोला कि मैं निकलना चाहता हूं, तो सर ने मुझे इजाजत दी. फिर मैं वापस थिएटर में आया, क्योंकि मैं
5: थिएटर मुंबई थिएटर में आया या
6: नहीं. मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि FTI पुणे में मिस्टर पेंटल जी मिले थे, वो वहां के HOD थे. उन्होंने, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली से हो तो तुम मेरठ क्यों नहीं आ जाते. मैंने कहा सर मेरठ, अब उस वक्त मेरठ का नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या आता था, वहां क्या होगा.
5: वहां क्या होगा, सही कहा आपने,
6: वहां क्या होगा सर. मतलब मैं मुंबई आया हूँ, दिल्ली छोड़कर आप मुझे दिल्ली के पीछे बुला रहे हैं मेरठ. बट उन्होंने बोला कि वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर खुल रहा है, और एक बार तुम वहां पर आओ, देखो
5: जी,
6: अगर तुमको अच्छा लगता है
5: काम करो.
6: तो मैं इसी मन से गया था कि
5: देख लेते हैं
6: क्या है, दिल्ली मेरा घर है, तो यही सोच के घर चले जाएंगे और आ जाएंगे. लेकिन जब मैं गया और वहां की एनर्जी जो मुझे मिली और जो मैंने स्ट्रक्चर देखा, वहां के लोगों से मिला जो इसके पीछे थे, तो मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि जहां मुझे लगा कि यहां मैं बहुत कुछ कर सकता हूं. तो मैंने सर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. फिर वहां पर यंग लोग आते थे
5: जी,
6: तो हमारा जो अनुभव है, जो हमने सीखा है, हम उसको आगे रखते थे. और 6 महीने के कोर्स में हम एक फुल लेंथ नाटक भी करते थे और फिल्मों की ट्रेनिंग भी चलती थी, और पेंटल साहब से मैं भी सीखता था. तो उस वक्त मैंने वहां पर बहुत ऐतिहासिक नाटक किए, जो जिंदगी में शायद मैं भी करना चाहता था. मोहन राकेश का आधे अधूरे, या आप कहें कि आषाढ़ का एक दिन, तो ये सब नाटक हमने, अंधायुग, ये सब नाटक हमने वहां नए लड़कों के साथ किए और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करे.
5: क्या बात,
6: बस उसके बाद फिर आगे सफर चलता रहा, मैं फिल्में भी करता रहा. 2016 के बाद मैंने वो वहां का सफर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया. फिर फ्रीलांस के तौर पर मैं अब टीचिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग, सब चीजें करता हूँ.
5: क्या बात है, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है. यूं कहें कि ये जो सफर रहा है माशाल्लाह सुहाना सफर रहा है. इसमें बहुत सारी कहें कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, और हर बात एक कहीं ना कहीं सीख भी देती है. जब आप मुझे अपना परिचय दे रहे थे कि NSDA आप ने किया है, NSDA के साथ साथ मुंबई आप गए, टीवी सीरियल आपने किया, तारक मेहता बहुत बड़ा शो है उसके आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद घर वापसी आपने की, यानी कि बैक टू पवेलियन कह सकते हैं. और जब बैक टू पवेलियन आप हुए तो उसमें भी एक अच्छा सफर आपका शुरू रहा, मेरठ में जो IFTI है उसके आप हेड भी रहे. तो ये जो अनुभव है, मैं समझता हूं कि आज हमारे स्टूडेंट्स को काम आने वाला है, जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें, किन किन बारीकियों को वो सीखें, कहां से सीखें, ये सारी बातें हम आप साथ जानेंगे जरूर. सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं संदीप जी, और बहुत सारी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई. तो ये जो अनुभव है हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ.

0: ए बाबू मोशाय, ये जिंदगी उस ऊपर वाले के हाथ में है रे। कब न जाने कौन इस जमीन से उठ जाए बाबू मोशाय। कुछ ऐसा ही अंदाज था राजेश खन्ना साहब का, और यहाँ डायलॉग मुझे धुंधला धुंधला याद था, तो बस मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, एक एडिटर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल की, एक विद्यालय की बहुत खास जरूरत होती है। और शारदा विश्वविद्यालय का शारदा स्कूल ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। और इसी बीच में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक संदीप महाजन, जो कि पेशे से बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोफेशनली इन्होंने एक विधिवत विद्यालय से शिक्षा लेते हुए मुंबई गए। मुंबई के साथ साथ उन्होंने तारक मेहता के आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद IFTI जो कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है मेरठ में, आप वहां पर एज एचओडी के पद पर आपने वहां काम किया। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।

0: मेहनत उस हिसाब से की जाती है
1: जी।
0: आपको सिंगर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, या आपको एडिटर बनना है, या आपको रेडियो जॉकी बनना है
1: जी, जी।
0: जैसे कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है। कभी कभार आप खुद उसको फाइंड आउट करने लगते हैं तो शायद बहुत समय लग जाता है उसको करने में। इसीलिए ये विद्यालय आपको काम आते हैं। जैसे आपने बताया कि शारदा का खुद एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। करते करते आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में होता है, रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन है वो अपने टाइम पे ना बॉलिंग किया करते थे और उनको बॉलिंग करना पसंद था, वो बैटिंग नहीं करते थे इतनी। तो उनके कोच ने एक बार उनको बैटिंग के लिए ओपनर भेज दिया, तो उस वक्त जो उन्होंने किया वो आज हिस्ट्री बन चुका है। अब वो टॉप के बैट्समैन बन चुके हैं। वो बनना चाहते थे बॉलर
1: जी,
0: लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो एक बेस्ट बैट्समैन है
1: जी।
0: तो इसी तरह की आर्ट जो आपके अंदर चाहिए, वो मेहनत ऑफकोर्स है, जैसा कि आपने कहा तैयारी चाहिए, लेकिन उस तैयारी के पीछे आपको जो गाइडेंस चाहिए वो एक टीचर ही दे सकता है।
1: बहुत खूबसूरत। यानी कि खुद को पहचानो
0: जी,
1: यानी कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही साथ जो आपने बात की गुरु की जो महिमा है, जो उसकी काबिलियत है कि दूसरों को पहचानना, उसके बाद उस बात को सुने जाने समझे और फिर वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सर आज के समय में हम देखें कि लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते,
0: समझ में नहीं आता है कि वो अपने ऊपर मेहनत करे क्या। जब आप बोलते हैं ना कि मेहनत करना है, तो वो सोचते हैं कि भाई आप हमें बता दो हम कर देंगे।
1: मेहनत कि सुनने को भी राजी नहीं है।
0: नहीं, आप हमें बता दो, आप हमें बता दो कि हमें ये चश्मा उठा के यहां से यहां रखना है, हम रख देंगे
1: जी।
0: बट मेहनत वो नहीं है ना। मेहनत सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेहनत ओवरऑल पर्सनैलिटी पे है। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
0: अच्छी संगत में आना पड़ेगा, अच्छा देखना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे। ये जैसे कि एक कहे कि एक तरह की डेली प्रैक्टिस है, सिर्फ एक दिन का काम नहीं,
1: क्या
0: एक महीने का काम नहीं।
1: बहुत खूबसूरत।
0: ये ताउम्र आपको जिंदगी में रखना पड़ेगा।
1: सर इसी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों का धैर्य टूट जाता है
0: जी।
1: कई लोगों ने इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत समय दिया है और आज वो अपना काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है। एनएसजी से वो पास आउट रहे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उन्होंने की, छोटा छोटा अभिनय किया, और आज जब वो हम देखते हैं कि वो एक ऐसे मुकाम पर है कि उनका एक उदाहरण दिया जाता है
0: जी जी।
1: तो लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने छोटा सा कोर्स कर लिया और उसके बाद हम मुंबई चले जाते हैं, और समय जब ज़्यादा लग रहा होता है या हो सकता है कि वो उन्होंने अपने आप को पकाया नहीं है, तो फिर लगता है कि नहीं यार हम ये नहीं कर सकते, मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, कितना धैर्य बहुत ज़रूरी है।
0: बहुत ज़रूरी है धैर्य। देखिए एनएसडी की मजबूरी है कि वो एक एन नंबर ऑफ बच्चे ही ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। इसी तरह से एफटीआई पुणे है या एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, अब तो बहुत सारे वेन्यूज खुल गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा, जैसे मनोज वाजपेयी जी ने एनएसडी में 3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ,
1: नहीं हुआ,
0: आज वो भी तो सफल एक्टर है।
1: सफल एक्टर, सही बात, सही बात
0: है कि नहीं। उन्होंने अपने आप को खुद तैयार किया है। उनको एक उनके गुरुजी मिले, वो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, वो दिल्ली शहर में आए, उन्होंने अपनी मेहनत करी, पकाया, और वहां से उठा के उनको ले गए शेखर सुमन जी। याद है उनकी पहली फिल्म शेखर सुमन जी के साथ जो उन्होंने करी थी, और उसके बाद रामू जी ने वो फिल्म देखी, और उस फिल्म के 4 साल बाद मनोज वाजपेयी रामू सर से मिले, और रामू सर उनको 4 साल से ढूंढ रहे थे। कमाल की बात है ना। और उनके सामने बैठे रामू सर, उनको पहचान नहीं पाए कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। वो कैरेक्टर इतना जबरदस्त किया था उस फिल्म में उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि आप अपने आप को तैयार, डेफिनेटली हमें गाइडेंस की जरूरत है कि तैयारी कैसे की जाए। लेकिन आज वेन्यूज बहुत खुल गए हैं। आज यूट्यूब का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आपके लिए पढ़ने के लिए सामने सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम देखते क्या है, रील्स।
1: सही बात है, सही बात है।
0: रील्स। तो आप जब रील्स देख रहे हैं और फेसबुक को स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है
1: जी,
0: चीजें आगे करते जाओ, बस आगे करते जाओ, बस आगे करते, ठहराव और धैर्य,
1: क्या बात,
0: खत्म।
1: क्या बात है सब।

बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि दोस्तों जिस तरीके से एक आंसर की उम्मीद थी, बहुत खूबसूरत सर ने जवाब दिया है कि ठहराव, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं वहाँ पॉज की बात होती है, और जिंदगी में ठहराव की बात होती है, यानी कि सोच के समझ के एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरी कोई कमी पेशी रह गई है, तो निश्चित तौर पर जो आपके टीचर रहे हैं, जो उस्ताद रहे हैं, उनसे जानिए समझिए, अपनी कमी को खूबी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर फतह आपकी जरूर होगी और आपकी मंजिल आपको मिलेगी जरूर। और क्या है खास जानेंगे जरूर संदीप महाजन जी से, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ये सारी बातें हो रही हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप महाजन जी, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर एडुकेटर हैं और बहुत समय इन्होंने इंडस्ट्री में दिया है, अपने आप को तपाया है, अपने आप को झोंका है और उसके बाद इंसान एक कहते ना कि बनकर निकलकर निखरकर सामने आता है। राह से भटकना इंसान को मैं समझता हूं कि पीछे लेकर चला जाता है और राह पर चलेंगे, समय देंगे, जिसके बारे में सर ने एक एग्जांपल दिया मनोज वाजपेयी का, जिक्र मैंने किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने अपने ऊपर समय लगाया, एक रास्ते पर चलते रहे, मेहनत की, वर्क अपने ऊपर किया, तब जाकर वो आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सर, जो लोग भटक जाते हैं, जो अभी आप और हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे, उनको लगता है कि मैं एक्टर बनने आया था, एक्टर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, एडिटिंग कर लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, तो ये जो लाइन चेंज करते हैं लोग बाग, ये कितना सही है कितना गलत है?
1: देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मुंबई शहर जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है वो है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के तौर पर बहुत सारे एक्टर बहुत पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए फिर वो फील्ड चेंज करते हैं क्योंकि उनको वहां सर्वाइव करना होता है। एक तरह से कहें इसमें कुछ अच्छा भी होता है और एक तरह से कहें कि कुछ चीजें पीछे भी रह जाती हैं। जब कुछ वो और चीज ढूंढते हैं तो उसमें उनको एक नई चीज मिलती है कि इसमें लगता है कि हाँ, ये चीज तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ
0: जी,
1: तो वो चीज वो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, यानी कि उस शहर से बाहर निकले। क्योंकि मेरा मानना यह है एक्टिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं होती है।
0: क्या बात,
1: आप इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वेन्यूज बहुत बड़े हैं, सिर्फ इंडिया में एक्टिंग नहीं होती है, इंडिया से बाहर भी एक्टिंग होती है। एक लिमिटेड साधन फिल्म नहीं है, वेब सीरीज नहीं है, अगर वाकई में आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपना छोटा मोटा थिएटर ग्रुप खोल के भी एक्टिंग कर सकते हैं। आपको एक्टिंग से प्यार है कि नहीं है, सवाल ये है।
0: क्या बात, जो आधार है, एक्टिंग
1: आधार है। आपके मन में अगर ये बात आ गई कि यार इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता,
0: है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
1: तो आप रास्ते निकालेंगे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिक्र आता है कि थिएटर का, रंगमंच का, मैं समझता हूँ कि रंगमंच से अगर आप निकल कर गए हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सशक्त अभिनय कर सकते हैं और मजे हुए कलाकार हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि बहुत शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, सगे संबंधी किसी के हैं, उन्होंने रंगमंच किया नहीं है, थिएटर किया नहीं है, तो हम एज अ दर्शक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। एज अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उन लोगों के बारे में जो रंगमंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिना रंगमंच के, बिना थिएटर के काम कर रहे हैं?
1: देखिए, सब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है,
0: काम कर रहे हैं, सही बात है।
1: और देखिए, जिनको प्यार है वो जो भी काम कर रहे हैं उस पे अपना एक सीखने का दायरा बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो टीवी में काम कर रहे हैं वो अच्छे एक्टर नहीं, काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है और कुछ टाइम बाद काम करने की फिर वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है उनको।
0: तो यानी कि आप सीधे लफ्जों में अगर हम कहें तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने आप को तपाना बहुत जरूरी है। आपने, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते करते सीख जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग तो ताउम्र गुजर जाती है, सीखते ही नहीं है और दर्शकों को उनका अभिनय पसंद नहीं आता, इसलिए चल रहे हैं कि आपके सगे संबंधी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ काम मिल रहा है।
1: जैसे कि आप इस प्रोफेशन में हैं, आप जब रात को सोते हैं तो एक अच्छी नींद सोते होंगे कि मैंने आज जो काम किया उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हैं
0: जी।
1: तो इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो काम सीखेंगे आप जरूर, आप रोज सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है, सर का आशय यही है, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर कोशिश मेहनत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो रुपया आपके पीछे पीछे आएगा, जो कि जरूरत है, नो डाउट रुपया आएगा, एक न एक दिन आपको रुपया मिलेगा और आपको आपके काम से जाना जाएगा, काम होगा तो निश्चित तौर पर दाम भी आपको मिलेगा जरूर, और वक्त ये आता है कि मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है और डायरेक्टर देते भी हैं, तो इसलिए बस अपने आप को तराशिए, अपने आप को तलाशिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या रेडियो जॉकी बनना है। शारदा विश्वविद्यालय भी आपको ऐसी कोर्स ऑफर करता है। और बस यही कहूंगा कि अगर आप इधर उधर कहीं भी यहां आना चाहते हैं तो यहां का माहौल देखिए, फैकल्टी से मिलिए, लोगों से मिलिए, प्लेसमेंट के बारे में जानिए। और जब इस तरीके के गेस्ट हमारे यहाँ विजिट करते हैं, संदीप महाजन जी जैसे जो कि खुद का अपना एक थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे जरूर। सो बस कहूंगा सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जानी, न ढाल से न तलवार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से।
1: सर हमने भी अभिनय की जब दुनिया में आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मिमिक्री मैं भी कर लेता हूँ। अभिनय तो नहीं है लेकिन हाँ नो डाउट यहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है। अभिनय हम जरूर सीखना चाहते हैं और जो बारीकियां आपने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई है, वो बारीकियां मैं भी अपनी जिंदगी में ध्यान रखूंगा। लिसनर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप महाजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। NSD से आप पास आउट रहे हैं और IFTI पुणे से भी आप पास आउट हैं। तारक मेहता का एक क्रिएटिव हेड के तौर पर आपने वहां काम किया, फिर आप एज अ डायरेक्टर IFTI जो कि मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है सर, वहां पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो हमें लेनी होती है अनुमति और एक सारांश निकालना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है, ये चर्चा हमारी कैसी रही और हम आपकी तरफ से एक संदेश जानना चाहते हैं। लेकिन सर बिफोर संदेश, बिफोर मैसेज, मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि इंडस्ट्री जिस तरीके से हमें दिखती है बहुत साफ सुथरी, ऐसा है भी नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं कि शोषण भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, लड़के भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, हताशा भी है, परेशान भी है। तो इस तरीके के माहौल से कैसे वो अपने आप को बचाकर आगे बढ़े। कल परसों मैं एक सुन रहा था, उपासना सिंह जी जो कि बहुत बड़ी एक्टर रही हैं, कहती हैं कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आपसे फेवर चाहिए और वो फिल्म को उन्होंने ठुकराया, अनिल कपूर के साहब के अपोजिट वो फिल्म थी, और वो कहती हैं कि काश मैं, मेरे साथ वो हादसा ना होता तो मैं आज अनिल कपूर की एक्टर होती। हादसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि कुछ गलत आशा की गई थी उनके साथ, गलत काम की उम्मीद की गई थी, जिस मैं यहाँ अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूँ। तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को आगे लेकर जाए और इस माहौल से कैसे बचा कर वो अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करे।
2: देखिए सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूँ, मैंने NSD की TI कंपनी में जॉब किया था
1: जी,
2: रेपेटरी कंपनी है उनकी, उसमें मैं जॉब करता
1: जी, जी जी।
2: अब आपकी बात पर आते हैं, देखिए ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है
1: जी,
2: मैं क्या करने आया हूं, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। शॉर्टकट वही लेता है जिसको अपना रास्ता खुद निकालना नहीं आता है या जो अंदर से कमजोर होता है। उस वक्त जरूर आपको ये लगता है कि मैं इसका एक्टर होता और मैं उसका एक्टर होता और मैं इसका एक्टर होता। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना रास्ता खुद निकालिए। आपको बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी मिलेंगे
1: जी,
2: पेशेंस रखिए। यह आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जैसे कि आपने उनका उपासना जी का एग्जांपल दिया और उन्होंने वो छोड़ा, वो उनका फैसला था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उनको रिग्रेट नहीं होगा कि उन्होंने वो नहीं किया। अनिल कपूर नो डाउट खुशी होती उनके साथ काम करते, लेकिन इस कीमत पे काम करना
1: सही का किसी को गवारा नहीं है।
2: अगर उनको गवारा नहीं है, ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। डिसीजन आपका है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपको कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता, आपके सामने एक ऑफर रखते हैं। ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती है।
1: क्या बात है। हाँ हम तो हिल गए क्योंकि ऐसा भी होता है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी था और आपने वाकई बखूबी इस सवाल का एक आंसर रखा कि जिंदगी के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इंसान को सोच के समझते हुए आगे बढ़ना है और अपना भी ख्याल रखना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना।
2: बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा खुद का अपना थिएटर ग्रुप है, कैमरा
1: प्लीज प्लीज बता
2: रहे हैं थिएटर स्टूडियो करके।
1: हाँ
2: ये ग्रुप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर के तौर पे क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैं अपने इस आर्ट को आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, जो मैंने इतने सालों में एक गुण सीखा, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो इस कमी ये कमी मुझे महसूस होती थी कि कोई आकर मुझे बताए कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता था। तो वो कमी मैं मेरे को महसूस होता है कि मैं जितनों को दे सकता हूं मैं दे दूं। तो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मैं मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनके अंदर झांकने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई में वो एक्टर बनना चाहते हैं
1: जी,
2: या सिर्फ वो फेम की वजह से आ रहे हैं।
1: शौकिया जी,
2: ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक्टर की जिंदगी में 24 घंटे मेहनत है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो आप तराशते हैं, निखारते हैं, ये जो सिलसिला है निरंतर चलता रहे। और आपका संपर्क सूत्र नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए जो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें, तो आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि वो थिएटर करें, आपके पास आए, आपसे सीखें।
2: जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9968135423। इंस्टाग्राम में अकाउंट है कैमरा एंड थिएटर स्टूडियो के नाम से ही। और साथ ही साथ मैं जाऊंगा कि मैं शारदा जी के साथ भी जुड़ूं, उस यूनिवर्सिटी, इस फिल्म स्कूल के साथ भी जुड़ूं, और इस आर्ट को अगर मैं किसी भी तरह क्या आगे दे सकता हूं तो मैं देना चाहूंगा।
1: बहुत खूबसूरत सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। और यही मैं जानना चाह रहा था कि शारदा विश्वविद्यालय का जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रख दी कि आप यहां से जुड़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जैसे टीचर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तरफ से बहुत कुछ हीरो को निकाल कर लेकर आ पाएंगे और जो कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी हाँ, अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय का फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल आपका बाहें फैलाए इस्तकबाल करता है, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा संदीप महाजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें आपने कही। जी प्लीज कुछ कहना
2: चाहते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं या आप हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर कैरेक्टर के अंदर फाइंड आउट करता है, फिल्म करेक्टर से बनती है, हीरो से नहीं, क्योंकि हीरो की जिंदगी बहुत छोटी होती है।
1: क्या बात है, ये देखिए ये छोटी छोटी बातें लिसनर, जो अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, लिसनर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके।
1: थैंक यू सर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं और बस यही कहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी

0: हर 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: का गोटे रंगा है लहरिया
1: अपने धंधे की फितरत समझिए।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और श्रोताओं, आज की बात थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो शोर नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपर टेंशन की। और खास बात यह है कि 17 मई को यानी कि आज ही के दिन पूरी दुनिया में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है ताकि हम सब इस खामोश खतरे को पहचान सके। तो ये हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्या बीमारी है, कैसे ये हो जाती है और किस तरह से इससे हमें बचना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और भी बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई जिनकी जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ में हैं आपके जाने पहचाने सिहतिया भैया। तो सिहतिया भैया, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: भाई धन्यवाद कपूर साहब, यानी कि शशि कपूर साहब, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी श्रोताओं को भी प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब कुशल होंगे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ईश्वर की कृपा के साथ साथ आप अपनी निरोगी काया रखें, यानी कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों। दरअसल ये बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर के अंदर अपना असर दिखाती रहती है। व्यक्ति को न दर्द होता है, न कोई खास तकलीफ महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रक्तचाप बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक कई बार स्थिति गंभीर हो चुकी होती है दोस्तों।
0: मतलब आदमी बिल्कुल ठीक महसूस करता रहता है, रोजमर्रा का काम करता रहता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके शरीर के अंदर कोई समस्या पल रही है। ये तो सच में बहुत डराने वाली बात है सिहतिया जी।
1: बिल्कुल, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है दोस्तों। आज दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं दोस्तों, लेकिन इनमें से बहुत सी बड़ी संख्या ऐसी लोगों की है जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। और जो लोग जानते भी हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सही तरीके से नियंत्रित वो नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है कि नियमित जांच का अभाव। अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि दोबारा दोहरा देता हूँ कि नियमित जांच आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। दवाइयों को बीच में छोड़ देना और जीवन शैली में जरूरी बदलाव न करना।
0: सिहतिया जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में स्थिति कैसी है, क्या यहाँ भी हालात इतनी ही गंभीर है या इससे भी ज्यादा चिंताजनक है?
1: भारत में भी स्थिति काफी चिंताजनक है आरजे भाई। यहाँ हर तीसरा वयस्क किसी न किसी रूप से हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। पहले ये माना जाता था कि ये बीमारी केवल शहरों या अमीर लोगों तक सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांवों में भी ये तेजी से फैल रही है। आज किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं दोस्तों। इसका कारण है बदलती जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता हुआ तनाव। तनाव बहुत बड़ी समस्या है आरजे कपूर साहब।
0: तो सिहतिया भैया, इसका मतलब अब ये सिर्फ उम्र या पैसे से जुड़ी बीमारी नहीं रही बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है।
1: बिल्कुल सही समझा आपने। अब ये बीमारी सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ चुकी है, जैसे ज्यादा नमक का सेवन, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने की आदत, दिन भर बैठकर काम करना, शारीरिक मेहनत का कम होना, तनाव लेना और पर्याप्त नींद न लेना। ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है।
0: सिहतिया भैया, आपने इसे साइलेंट किलर कहा, जरा हमारे सुनने वालों को और अच्छे से समझाइए कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होते तो लोग इसे गंभीरता से क्यों लें?
1: देखिए कपूर साहब, यानी कि शशि कपूर साहब, मेरे प्रिय दोस्त, जब ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है तो ये धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दोस्तों, दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर असर पड़ता है जिससे स्ट्रोक हो सकता है। किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यही है कि ये सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के होता रहता है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक गंभीर लक्षण सामने आते हैं तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों,
0: मतलब खतरा चुपचाप बढ़ता रहता है और इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इसका अंदाजा ही नहीं होता। ये सोचकर ही डर लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, वही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए आज की इस बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जागरूक होना होगा और समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो सिहतिया भैया, इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि वो इस साइलेंट किलर से खुद को कैसे बचा सकता है तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: देखिए शशि कपूर साहब, सबसे पहले हम आप एक दूसरे को, श्रोताओं को, सुनो शारदा को धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा हम यहाँ स्मार्ट संस्था के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रामाणिक कहानी नहीं, प्रामाणिक जानकारी है, यानी कि इसकी प्रामाणिकता सच्ची है। इसमें कहीं आपकी हमारी झूठी हुई बातें नहीं है और वो कोई बात झूठ ना जाए उस बात का भी हम ख्याल रख रहे हैं। सच्ची बातें, डॉक्टर की बताई हुई बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराना। जो आपका सवाल था अब जवाब पर आ गया। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति को, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ क्यों ना महसूस करता हो, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना चाहिए क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, ये बीमारी बिना लक्षण के भी हो सकती है। इसलिए केवल मैं ठीक हूँ महसूस करना काफी नहीं है, जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। दोस्तों,
0: तो सिहतिया भैया, आपने जांच की बात कही तो ये जो जांचें होती हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कहां पर करवाई जा सकते हैं? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा या खर्चा ज्यादा होगा।
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत आसानी से और कई बार मुफ्त में भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, ANM और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी भी गांव-गांव जाकर ये जांच करते हैं। कई जगहों पर तो छोटे क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर भी मशीन उपलब्ध होती है। मतलब अब जांच करवाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस हमें खुद पहल करनी होगी।
0: तो सिहतिया जी, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता है तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है?
1: बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, जवाब मैं दे देता हूँ आपको। बहुत कठिन नहीं है भाई, बहुत कुछ आसान है, लेकिन जरूरी है कि हम इसे नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहले नमक का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि ज्यादा नमक सीधे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना कम से कम करना चाहिए। हमें अपने भोजन में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। रोजाना थोड़ा बहुत चलना फिरना, जैसे सुबह या शाम की सैर, बहुत फायदेमंद होता है। तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो ध्यान अर्थात जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या कोई पसंदीदा काम करना हो। और सबसे जरूरी बात, तंबाकू और शराब से दूरी बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को बिगाड़ते हैं। दोस्तों,
0: आपके कहने का मतलब छोटी छोटी आदतें जो हम रोज करते हैं वही हमारे स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर डालती हैं।
1: बिल्कुल, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर दवा देते हैं तो उसे नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जैसे कि उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता है वे दवा लेना बंद कर देते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है। इसे लगातार नियंत्रण में रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ देने से स्थिति और खराब हो सकती है कपूर साहब।
0: लेकिन सिहतिया भैया, अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रहे तो क्या शरीर कुछ संकेत देता है? क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, जवाब भी बहुत अच्छा है। जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना, बहुत तेज सर दर्द होना, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, सांस फूलना या आंखों के सामने धुंधला दिखना। ये सभी संकेत खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज ही जीवन बचा सकता है।
0: सिहतिया भैया, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक कि वे किसी असली घटना से ना जुड़े। क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये एहसास करा सके कि यह समस्या कितनी गंभीर है और समय पर ध्यान देना कितना जरूरी है?
1: हाँ जी साहब, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे ही गाँव

0: डॉक्टर ने जांच की और जो बात सामने आई उसने सबको हिला दिया। राम प्रसाद जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनके दिमाग की नसों पर असर पड़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ये समस्या अचानक नहीं हुई, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कभी जांच न कराने की वजह से पता ही नहीं चला। परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कपूर साहब, उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, अगर हम पहले जांच करवा लेते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, हालात धीरे धीरे सुधरे, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगा। उस घटना के बाद राम प्रसाद जी की जिंदगी बदल गई। आज वही राम प्रसाद जी गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई गलती मत करना जो मैंने की, बीमारी आने का इंतजार मत करो, समय पर जांच कराओ। वो अब हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं और दवा लेते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात अब वो सिर्फ अपनी नहीं पूरे गांव की चिंता करते हैं। उनकी कहानी श्रोताओं हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं उतना होते नहीं है, और एक छोटी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है।
1: बिल्कुल, तो साथियों आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी या साधारण समस्या नहीं है। ये चुपचाप शरीर के अंदर अपना असर दिखाता रहता है और जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक कई बार नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं, अपने शरीर के संकेतों को समझें और छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं तो इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शशि कपूर साहब। मैं भी हमारे सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांचते रहिए, क्योंकि यही सबसे पहला और जरूरी कदम है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, ज्यादा तला भुना और पैकेट वाला खाना कम कर दीजिए, और जितना हो सके अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल कीजिए दोस्तों, चाहे वो रोज थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे बीच में कभी ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसे लगातार नियंत्रण में रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और साथियों आज का हमारा संदेश बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। खामोश है ये बीमारी पर असर इसका भारी, अगर समय पर ध्यान न दिया तो पड़ सकती है जिंदगी पर ये भारी। इसलिए आज ही संकल्प कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे।
0: याद रखिए, स्वस्थ रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज की भी सुरक्षा है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपने अपनों को भी सुरक्षित रखते हैं।
1: बिल्कुल, और सियातिया जी अब समय हो चला है कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए, कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई।
1: तो दोस्तों सेहत की शपथ के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना खास ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नियमित जांच कराते रहिए। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अरे सुना।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
7: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Ole ole ole. Oh, Sholat. हेलो कौन
2: नमस्कार हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं
2: जल्द मिलते हैं
1: हेलो हेलो हेलो
4: आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ORS और जिंक है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
6: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: छुपाते फिरें, टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महामारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महामारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
1: महामारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: महामारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: महामारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके माहवारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी माहवारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य यही है कि आप खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानें, फिर उनका इस्तेमाल अपनी खेती में करें ताकि आपको अधिक लाभ मिले और खेती में आपकी लागत है वो कम हो। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग अब संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। किसान मित्रों, सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आपकी काफी मदद कर रही है, जिसके लिए कुसुम सोलर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। किसान मित्रों, कुसुम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदल रही है। तो जो किसान भाई सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो किसान मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कुसुम योजना का लाभ लेना, तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में इस बारे में बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी, और किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी से ये रागनी किस्सा था जानी चोर का। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसानों के साथ ही अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजनाओं का ऐलान करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से पशु मित्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित युवाओं को पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के रोग कारण, उनके रोकथाम की जानकारी, टीकाकरण, ब्रीडिंग और आहार का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी पशु मित्र के रूप में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने जिले में आवश्यक सेवा प्रदान कर सकते हैं और पशु मित्र के रूप में कार्य कर अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। पशु मित्र योजना के माध्यम से पशुपालक किसानों को टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पशु मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं जो किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे हमारे पशुपालक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। पशु मित्र योजना के तहत बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को कार्य निष्पादन के अनुसार निर्धारित मानदेय का लाभ दिया जाएगा। तो जो भी हमारे ग्रामीण युवा पशु मित्र बनना चाहते हैं, वो अपने जिले में जिला पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से जान करके आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना पशु मित्र योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और सुनील चौहान। किस्सा रहेगा महाभारत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जल संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन, इसके जरिए हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान भाई कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसीलिए पानी बचाने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचय करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो आजकल जो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और खेती में लागत कम कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण वालियान।

तरुण बालियान द्वारा गाए गए इस उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है, टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह कि बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है।

0: पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशाद 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

घर की सपनी बेनूरी पर रोई है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज सत्यमान की सूरत को देख करके सावित्री के अरमान खिले हुए थे। सोचने लगी कि जो मेरी कोशिश थी, जिस तस्वीर की मुझे तलाश थी, आज वो मुझे मिल गई। मेहरबानों, सावित्री का मन, सावित्री की निगाह सत्यवान की शान शौकत से हट

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नारी शक्ति का रूप है, नारी दुर्गा का रूप है, और यही एक वजह है कि भारतीय नारी का सम्मान किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नारी का सम्मान किया जाना चाहिए, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया। इसका मतलब अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं नारी आज भी अपने सम्मान के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही है, जूझ रही है, और यही एक वजह है कि उसको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। महिला हिंसा के रूप में अगर हम देखें, शारीरिक हिंसा, यौनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इस हिंसा से पीड़ित है, परेशान है। और हम यही कहना चाहते हैं, हमारा रेडियो यही कहता है, स्मार्ट के सौजन्य से मिलकर ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक जागरूक वाला कार्यक्रम कि महिलाओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सोचिए, कल्पना करिए कि अगर महिला ना होती तो शायद आप और हम ना होते। महिला होती है, वो दो घरों को संभाल कर चलती है, एक बाबुल का और एक पिया का। यही एक वजह है कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होती है, संस्कारों की बातें होती हैं। आइए कुछ अच्छी अच्छी बातों के जरिए सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं, कहां क्या गलत हो रहा है उसको सुधारने की बातें करते हैं, और समझते हैं कि इस हिंसा को, सामूहिक हिंसा को कैसे रोकें और किस तरीके से अपनी जिंदगी में हम खुशियां ला सकते हैं, यानी कि महिलाएं खुशियां ला सकती हैं। आज का विषय है कि कौन सी महिला हिंसा को आसानी से शिकार हो जाती है। हिंसा किसी भी महिला के साथ हो सकती है, इस बात को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं खास तौर से कमजोर स्थिति में होती हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जो कमजोर स्थिति में होती हैं? गरीबी में जी रही महिलाएं, एक बात, अनाथ लड़कियां अथवा एकल अभिभावक के साथ रहने वाली लड़कियां, एक सर्वे हमें बता रहा है, उसके आधार पर ये बात मैं आपके साथ साझा कर पा रहा हूं। जिन परिवारों की मुखिया औरतें हैं, जिनके पिता या पति लापता हैं या मर चुके हैं, शराबी पतियों की पत्नियां भी ज्यादा हिंसा का शिकार होती हैं, बेसहारा महिलाएं, बुजुर्ग और रोगी महिलाएं, विकलांग महिलाएं या विकलांग बच्चों की माताएं, पिछड़े अथवा अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं, यौन कर्मी, वे महिलाएं जो यौनिक व्यवहार के मामले में अल्पसंख्यक हैं, जैसे वे महिलाएं जो किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध रखती हों, तथा साथ ही वे महिलाएं जो महिला और पुरुष दोनों के साथ यौन संबंध रखती हों। अगला बिंदु है वो महिलाएं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे आश्रय घरों में रह रही हों, आपदा के बाद और संघर्षमय हालातों से घिरी महिलाएं, जैसे आपदा ग्रस्त हालातों, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी इत्यादि, और संघर्षमय स्थितियों जैसे कि दंगे, पारिवारिक झगड़े और युद्ध, आतंकवादी हमले या सरकार के खिलाफ विद्रोह में छोटी लड़कियां या महिलाएं यौन शोषण के खतरों से घिरी होती हैं। इन हालातों में अगर वो अपने अभिभावक, माता पिता या अन्य किसी दूसरे पारिवारिक सदस्यों को खो देती हैं, तो ये असुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। इन बातों को यहाँ डिस्कस करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित व्यवहार न हो, अगर कहीं हो रहा है तो उसका हम विरोध करें। यही वजह कि इस कार्यक्रम के जरिए वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 0120-4060-205 पर आप मुझे कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट के सौजन्य से एक खास कार्यक्रम महिलाओं पर आधारित विशेष श्रृंखला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को अपने कानून के बारे में जानना, अपने अधिकारों के बारे में जानना, अपने प्रति हो रही हिंसा के बारे में जानना, उसको किस तरीके से रोका जाए उसके बारे में जानना समझना हमारे लिए वाकई बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि यही चीजें अगर हमारे घर में हो रही हैं, तो शायद अगर कहीं हम अनजान हैं, तो हम जाने समझे, हम जाने समझे कि क्या मेरी बहन बेटी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। चलिए, हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इस विषय में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ बिंदुओं के बारे में बात की कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जब हमें जानना समझना जरूरी है कि ये सारी बातें एक हिंसा के अंतर्गत आ रही हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन लक्षणों और संकेतों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं पर आधारित। सो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा शारीरिक या मानसिक प्रभाव के रूप में दिखाई दे सकती है, या ये महिला के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। हो सकता है कि इन प्रभावों के बारे में बात करते हुए महिलाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में ठीक से न बता पाएं, और ऐसा अक्सर होता भी है। कहीं ना कहीं वो असहज महसूस करती हैं, डर होता है कि कहीं ये मेरी बात जग जाहिर ना हो जाए और जिससे अपनी बात में साझा कर रही हूँ वही वक्त आने पर मुझे उस बात से चिढ़ाए या मुझे परेशान करे। ऐसा होता भी है। घर घर जाने के दौरान आप अपना ध्यान दे सकती हैं कि जो महिलाएं हैं उन लक्षणों के बारे में शिकायत कर सकती हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, खासतौर से यौन हिंसा के मामले में। लेकिन हो सकता है कि वे यौन हिंसा के सच के बारे में बात न करें। और अक्सर आपने हमने देखा होगा कि अक्सर चोट लगने और उसके इलाज के बीच काफी देरी हो जाती है। आपको इस सच के बारे में संवेदनशील होना चाहिए कि जो लक्षण हैं उनके संकेतों हमें समझना होगा। और पीड़ित महिलाएं वास्तव में दुर्व्यवहार से पीड़ित भी हो सकती हैं, इस बात को हमें जानना होगा। उनके इतिहास के बारे में जानकारी लेते समय संवेदनशीलता हमें बरतनी होगी। बात करते हैं कि शरीर पर नील, खासतौर से आंखों और चेहरे पर, कानों पर चोट के निशान जिसके कारण सुनने में परेशानी होने की शिकायत हो सकती है, दांत ढीले होना या टूटना, बिना किसी स्पष्ट जानकारी वजह के लंबे समय से की जाने वाली शिकायतें, इसमें दर्द की बेवजह शिकायतें सुन्न पड़ जाने या निचले पेट में दर्द की शिकायतें शामिल हैं, गर्भवती महिलाओं का अकारण गर्भपात, आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या के ख्याल आना, चिंता, डर, निराशा, खुद को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार, नींद की समस्याएं, ऐसी शिकायतें जिनसे आपको शक हो कि यौन हिंसा हो रही है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। कुछ और बातें मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। तो हमेशा हमें सतर्क यानी कि अलर्ट रहने की जरूरत है, आवश्यकता है। कहते ना कि कान खोल कर रखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि आप ये विशेष कार्यक्रम सुन रही हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये होना अगर हो रहा है हमारे साथ तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इन बातों के खिलाफ हमें आवाज उठानी ही होगी। सो पेट के निचले हिस्से में लंबे समय से दर्द की शिकायतें, मूत्र मार्ग संक्रमण के संकेत और लक्षण जैसे पेशाब करने में अक्सर परेशानी, दर्द या जलन होना, ठंडे से बुखार होना और बार बार और गाढ़े रंग का पेशाब आना, यौन संक्रमण के लक्षण जैसे योनि में खुजली, असामान्य स्राव, खुजली, लाल चकत्ते होना, जननांग क्षेत्र के निचले हिस्से या मुहाने पर कटाव या सूजन होना, छोटे बच्चों या युवा लड़कियों में यौन संक्रमण, अविवाहित या 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का गर्भधारण। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना वाकई बहुत जरूरी है। सुनना समझना चाहिए कि हमारे साथ कहीं कोई अनुचित व्यवहार दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम इसका विरोध करें, अपने परिजन को बताएं और वक्त रहते हुए पुलिस को भी अगर आप सूचित करेंगे तो यकीन मानिए कि किसी हद तक या यूं कहें कि बहुत हद तक आप इस तरीके से अपने साथ होने वाले व्यवहार को रोक सकती हैं। महिलाओं पर होने वाली हिंसा के दुष्परिणाम वाकई एक अच्छा विषय है, इसके बारे में जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। ये विशेष
कार्यक्रम सुनो शारदा 90.8 FM साथ ही साथ स्मार्ट के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप हमें 0120-40-60-205 पर कॉल कर बताइएगा जरूर। अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करते रहें और सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। ये सच बात है कि महिलाओं के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, या उनकी बातों को अपने जीवन में हमने गढ़ा है। माँ को हमने नजदीकी से देखा है घर में सेवा करते हुए, माँ को हमने नजदीकी से देखा है खुश रहते हुए, माँ को हमने नजदीकी से देखा है दुखों को झेलते हुए, या हमने कभी कभी ऐसा भी दुख झेला है, देखा है कि जो किसी के साथ ना हो, क्योंकि अम्मा को अक्सर हमने कभी कभी पिटते हुए भी देखा है। अम्मा को अक्सर हमने घर वालों के जरिए भला बुरा कहते हुए सुना है। ये हो सकता है कि ये कहानी या ये बात मेरे घर में हो, आपके घर में हो। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इस संबंध में स्मार्ट के सौजन्य से ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कुछ बातें हमारे घर में हो रही हैं, तो समझ जाइए कि ये हिंसा का ही एक परिणाम है। बात करते हैं कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा के दुष्परिणाम। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है, जानने समझने की वाकई बहुत आवश्यकता है। डरे नहीं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। शारीरिक हिंसा के बारे में बात करते हैं। सो छोटी मोटी चोट से लेकर नील पड़ने तक की चोट, जलना, गंभीर या पुराना दर्द और छोटी लड़कियों में कुपोषण, गंभीर हिंसा के कारण हड्डी टूटने, विकलांगता और कई बार मृत्यु, जानलेवा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक या मानसिक। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव शारीरिक प्रभावों से कहीं ज्यादा गंभीर और हानिकारक होते हैं। वो महिला के आत्मविश्वास को झकझोर देते हैं, इससे कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी वजह से यही कारण है कि महिलाएं वास्तव में आत्महत्या कर सकती हैं या आत्महत्या की कोशिश करती हैं। इसकी वजह से उनमें निराशा, चिंता और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। किशोरी बालिकाओं और वयस्क महिलाओं का यौन स्वास्थ्य भी यौनिक जबरदस्ती के कारण प्रभावित हो सकता है। मारपीट की परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लक्षण, ये लक्षण ऐसी महिलाओं में देखे जा सकते हैं जो लंबे समय से प्रताड़ना या मारपीट को झेल रही हैं। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ये घटना या तो मेरे घर की कहानी है या किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी है या किसी दूसरी महिला की ये कहानी है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम सही कर रहे हैं? ये गलत है। कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी यानी कि मैं महिला की बात कर रहा हूँ, उस घर में सुख शांति का वास होता है, तरक्की वहां होती है, बरकत वहां होती है। जहां ग्रह क्लेश होती है, महिलाओं का अपमान होता है, तो वहां कभी बरकत हो नहीं सकती। बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। अवांछित गर्भावस्था और यू कहें कि यौन संक्रामक बीमारियां सामान्य लक्षण है। अन्य लक्षण है जननांग क्षेत्र में चोट लगना, गर्भावस्था के दौरान गर्भपात, समय से पहले प्रसव और यहाँ तक कि मातृ मृत्यु जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देने वाले आघात। बच्चों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम, ये अहम टॉपिक है, खास बिंदु है। जब हम अक्सर ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं अपने घरों में देखते हैं, तो बच्चों पर भी कहीं ना कहीं वही असर पड़ रहा होता है। अपनी माँ को उत्पीड़न का शिकार होते देखने वाले बच्चे या तो गुस्सैल या आक्रामक बन जाते हैं, या फिर वे खामोश हो जाते हैं और अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। उत्पीड़क परिवारों में रहने वाले बच्चे अक्सर ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता और वो अन्य बच्चों के मुकाबले धीमी गति से सीखते हैं। वो मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर वो अकारण स्कूल से अनुपस्थित रहने लगते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं और इससे स्कूल में उनके कार्य प्रदर्शन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे अक्सर घर से भाग जाते हैं, अपनी ओर ध्यान खींचने वाले व्यवहार करते हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ जाती है। अक्सर जब कोई महिला घर में उत्पीड़न का शिकार होती है तो उसके बच्चों में भी ये भावना घर करने लगती है कि लड़कियों और औरतों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और उनके साथ होने वाली हिंसा ठीक या स्वीकार है, और आगे चलकर बच्चे भी कहीं ऐसा ना करें, ये डर भी हमें सताया रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि किसी भी घर में इस तरीके से घटनाएं, दुर्घटनाएं, दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ ना हो। हमारा फर्ज बनता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उनको इज्जत दें। जब वो खुश होंगी तो जाहिर सी बात है कि हम सब खुश होंगे ना। आप नहीं चाहते कि आपकी बहन को किसी पराए घर में दुख मिले, आप नहीं चाहते कि आपकी माँ को दुख मिले।
तो हम किसी की बहन बेटी को कैसे दुख दे सकते हैं, अपने बच्चों की माँ को हम कैसे दुख दे सकते हैं। सो प्लीज समझदारी दिखाएं, महिलाओं का सम्मान करें, अपना ख्याल रखें और बस जिंदगी को हंसते गाते मुस्कुराते गुजारते चले जाएं। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती हैं तो अच्छी बात है, और जब आप ये कोशिश प्रयास करेंगी तो ये सच है कि समाज आपके साथ चल पड़ेगा और सामाजिक तौर पर एक आप उदाहरण कहीं ना कहीं पेश कर रही होंगी, और इसी तरीके से आप किसी ना किसी प्रेरणा के स्रोत भी होंगी। सो प्लीज, हमारा फर्ज बनता है कि महिलाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें। कुछ बातें महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको जागरूक कर सकते हैं, इसी विषय पर ध्यान रखते हुए हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की क्या भूमिका है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर हस्तक्षेप करने में दो प्रकार की भूमिका हो सकती है, जैसे कि हिंसा को रोकना यानी कि जागरूकता पैदा करना, और समुदाय को किसी भी प्रकार की हिंसा यानी कि महिला हिंसा के खिलाफ एकजुट करना। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना, हिंसा की रोकथाम यानी कि सामुदायिक स्तर पर आशा की भूमिका। इसी संबंध में हम बात करते हैं एकजुटता लाना, यानी कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा समाज में गहराई से फैली सांस्कृतिक असमानता के कारण है। इस पर आवाज उठाने के लिए समुदाय में लगातार जागरूकता और एकजुटता लाने के प्रयास किए जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। आपके लिए अकेले इस मुद्दे पर काम करना मुश्किल होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ आशा वर्कर की, इसलिए आपको ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों यानी कि VHSNC, ग्राम पंचायत और महिलाओं के साथ काम करने वाले ग्राम स्तरीय सामाजिक सहायता समूह जैसे कि महिला मंडल, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वास्थ्य संघ या महिला पंचायतों जैसे अन्य सामुदायिक समूहों के साथ सहभागिता बनानी होगी। आप अपने PHC कार्य क्षेत्र को अंतर्गत काम करने वाली आशाओं का एक समूह बना सकती हैं और हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए समर्थन जुटा सकती हैं। इसके लिए आप मासिक PHC बैठक को मंच का प्रयोग भी कर सकती हैं। इन बैठकों में आप हिंसा के मुद्दों पर चर्चा कर समूह के साथ सहभागिता बढ़ाने का प्रयास कर सकती हैं। कई बार हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। उस स्थिति में आपको उन समूहों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए, उनके बराबर संपर्क में रहना चाहिए जो हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को अनौपचारिक सहायता और आश्रय प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। ये समूह हिंसा को बढ़ावा देने वाली मूलभूत समस्याओं के बारे में व्यापक मंच पर चर्चा चला सकते हैं और हिंसा से जुड़ी दूसरी समस्याओं को ग्राम स्तर पर सुलझाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण हितभागियों जैसे कि इस विषय से जुड़े सभी पक्षों यानी कि महिला हिंसा के मुद्दे पर परिचर्चाएं सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे पंचायत के प्रतिनिधि, महिला समूह, स्थानीय सामुदायिक नेता, लड़कियों के माता पिता, अभिभावक इत्यादि से बातचीत करना जरूरी है, आवश्यक है। ग्राम स्तर पर महिलाओं की सहभागिता और आवाज को सामने लाने वाले समूहों के साथ एकजुटता मजबूत करने से महिला हिंसा की समस्याओं को ज्यादा बुलंद आवाज में पेश किया जा सकेगा। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पारिवारिक झगड़ों की स्थितियों और धार्मिक या जातिगत संघर्षों में भी होती रहती है। महिलाओं को सामान्य तौर पर संपत्ति या जागीर के रूप में देखा जाता है और अक्सर ऐसा होता भी है, अक्सर सबसे पहले उन्हें ही हमलों का शिकार बनाया जाता है, और इन मामलों में आपको खुद ही अपनी अंदरूनी बाधाओं से ऊपर उठना चाहिए जो आपको किसी खास समूह से जुड़े होने के कारण सीमाओं में बांधती हैं। ये सब करते समय आपको बहुत कुछ प्रयास करने होंगे।

एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। बिंदु है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर आवाज उठाने में आशा की भूमिका क्या है, इस पर हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले। एकजुटता लाना, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, समुदाय को शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता निर्माण और लोगों को एकजुट करना आपकी गतिविधियों का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। आपको इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अपने गांव की किशोरियों, युवतियों और महिलाओं के साथ बैठक करनी चाहिए। ये कुछ ऐसी समितियां हैं एकजुटता लाने का काम करती हैं। आशा वर्कर हो गई, गांव के प्रधान हो गए, महिला इकट्ठे होकर अपनी बात रख सकती हैं, है ना। अब बात करते हैं कि मान्यताओं को बदलना, जैसे कि मारपीट प्यार की अभिव्यक्ति का एक ही रूप है, वो मुझे मारता है तो क्या हुआ। कोई भी औरत अपने साथी के बिना नहीं रह सकती, चाहे वो उसके साथ दुर्व्यवहार ही क्यों ना करता हो। बलात्कार की शिकार महिला की ही गलती होती है, या लड़की की शादी कम उम्र में ही कर देनी चाहिए क्योंकि फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न होने की संभावना नहीं रहती, इत्यादि। तो ये मान्यता है कुछ ऐसी, इनको बदलने की आवश्यकता है। किशोरियों साथी

महिलाओं को मासिक बैठकों में हिंसा से जुड़े मुद्दों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें अपने अनुभव बांटने के लिए प्रेरित करना ताकि उनके बारे में कोई कदम उठाया जा सके। अगला बिंदु है घरेलू हिंसा यानी यौन उत्पीड़न आदि रोकने के लिए बनाए गए जो कानूनी प्रावधान है उन अधिनियमों के बारे में जागरूकता फैलाना। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ वन स्टॉप सेंटर भी होते हैं तो वहाँ जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, है ना। दहेज संबंधी उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक जाति सम्मान के नाम पर की गई हत्या, लड़कियों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव, साथ ही साथ विवाह के पंजीकरण और लड़कियों को उत्तराधिकार के हक दिलाना, इस तरीके से या यूं कहें कि आदि से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होने और अभियानों को आयोजित करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के माध्यम से प्रयास करना, लड़कियों और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समुदाय में जानकारी फैलाना। इनमें से कुछ हैं जैसे कि बालिकाओं के लिए शैक्षिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली योजनाएं, सबला योजना, महिला समाख्या, एकल महिलाओं जैसी विधवाओं, अविवाहित तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन योजना, आपके राज्य में चलाई जाने वाली कोई विशिष्ट योजनाओं के बारे में आपके प्रशिक्षक यानी संवादक जानकारी प्रदान करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो बातें हैं, कहाँ कोई बैठक हो रही है, कहाँ कौन अधिकारी आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ आशा वर्कर्स की, और महिलाओं को आप वो इकट्ठा करें, उनको भी बताएं कि आज ये मीटिंग होने वाली, इन मुद्दों पर मीटिंग होने वाली है, ताकि वो भी तैयार होकर वहां आए। बात करते हैं कि हिंसा के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना। इसके अंतर्गत बिंदु आता है कि मुद्दे के बारे में सचेत रहना। आप स्वयं सचेत रहते हुए किसी महिला के बारे में पता लगा सकती हैं जो हिंसाग्रस्त है या हिंसा के खतरों से घिरी है, और ऐसे उपायों की खोज कर सकती हैं जो ऐसी महिलाओं की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा पति जिसके व्यवहार में हमेशा नियंत्रण की बू आती हो, अथवा जब आप महिला के साथ बात कर रही हो तो वो उसे अकेला न छोड़ना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर आप संभावित हिंसा के बारे में सचेत हो सकती हैं। ऐसी चोटों के बारे में सचेत रहें जिनके बारे में बताए जाने वाले कारणों से आपको वो सच ना लगे। अगर आपको कोई ऐसी महिला मिलती है जिसके साथ हिंसा होने का खतरा है या हिंसा हुई है, भले ही उसने इस बारे में कोई रिपोर्ट ना की हो, तो आपका उसके साथ हुई या होने वाली हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा फर्ज है आशा वर्कर का, और अगर आप इस जानकारी को सुन रहे हैं या सुन रही हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अगर व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये तो मेरे साथ हो रहा है, तो आप तुरंत आवाज उठाएं और इसका जो विरोध है वो आपको करना चाहिए। और इस संपर्क में आप अपने पुलिस अधिकारी से मिल सकती हैं, आशा वर्कर से मिल सकती हैं, महिला समिति में आप जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तो गंभीर प्रकार की हिंसा के मामले जानलेवा भी हो सकते हैं, वहां महिला को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है। कम गंभीर हिंसा जो वैसे तो कम हानिकारक होते हैं, और गंभीर हिंसा के फर्क को समझना चाहिए। अगर आपके सामने कोई गंभीर हिंसा का मामला आ जाता है तो आप क्या करेंगे, महिला को तत्काल किसी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करें। जब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हिंसा हो रही हो या ऐसी स्थिति हो जहां हिंसा के कारण महिला के जीवन को खतरा हो, तो तुरंत कार्रवाई करें। आपको तुरंत किसी पारिवारिक सदस्य या सामुदायिक सदस्य, यूं कहें कि जिस पर आप विश्वास कर सकें, उसको ढूंढना चाहिए जो महिला को हिंसात्मक स्थिति से बचा सके। अगर जरूरत हो तो आप पुलिस संरक्षण भी ले सकती हैं। आप उस महिला के लिए उस क्षेत्र में चलाए जा रहे किसी आश्रय घर से, या यूं कहें कि घर में आश्रय ढूंढ सकती हैं, या किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था से संपर्क कर सकती हैं जो विपत्ति में फंसी महिलाओं को सहयोग और सेवाएं देने का काम करते हो। बात आती है सवाल पूछें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि सवाल हमेशा अकेले में और बिना किसी दोषारोपण के पूछे जाने चाहिए। हिंसा के बारे में सीधे सवाल करने से शायद आपको कोई जवाब ना मिले। महिला का विश्वास जीतें और उसे ये विश्वास दिलाएं कि उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारियों को गुप्त रखा जाएगा। याद रखें कि पारिवारिक सदस्यों या पति या साथी के समक्ष महिला से कुछ भी पूछना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना ये भी एक बिंदु है। आपको ये आकलन करना चाहिए कि क्या महिला शारीरिक चोट या मानसिक आघात से पीड़ित है। मामूली चोटों के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करें, लेकिन यदि आपको कोई गंभीर प्रभाव दिखाई देते हैं तो उसे समुचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए सही जगह भेजें। यदि आवश्यक हो तो साथ लेकर जाएं या फॉलोअप कार्रवाई सुनिश्चित करें। बात करते हैं भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। आशा के रूप में आप उनकी सबसे
भरोसेमंद साथी बन सकती हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ, पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं आशा वर्कर की भूमिका क्या होती है। सो महिला की खामोशी को तोड़ने और खुद पर हुई हिंसा के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में आप मदद कर सकते हैं। उनसे बात करें और शर्म, डर, गुस्से और निराशा की भावनाओं से उबरने में उनकी मदद करें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि उनके साथ हुई उत्पीड़न में उनकी कोई गलती नहीं है। आखिर में पॉइंट है, बिंदु है कि महिला की सुरक्षा के उपाय करें। महिला को बताएं कि कैसे उन्हें हिंसा होने की संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वयं वो अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। सो आज हमने बात की महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे कुछ और खास बिंदुओं के साथ, हम आपसे पुनः जोड़ेंगे। तो इस बात को जानिए, इसका मर्म समझिए कि क्या गलत हो रहा है महिलाओं के साथ, क्या सही होना चाहिए। फिर मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं का हम सबको सम्मान करना चाहिए। महिला है तो हम है, महिला है तो घर है ना। और कहा जाता है कि वो घर की लक्ष्मी होती है। जहां आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो उस दिन से बरकत आपके घर की घटने लगेगी। अपना ख्याल रखें, सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में।
2: सब बच्चों को लग रहा होगा, अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई और ये उषा दीदी म्याऊं म्याऊं की आवाज क्यों निकाल रही हैं? वो इसलिए बच्चों क्योंकि आज हम आपके लिए जो कविता लेकर आए हैं उसका नाम ही है म्याऊं म्याऊं, यानी म्याऊं म्याऊं। अब आपको ये सोचकर याद आ रहा होगा कि ये म्याऊं म्याऊं कौन कहता है? बिल्ली। शाबाश, आपने तो झटपट ये पहचान लिया कि यह बिल्ली की आवाज है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का बहुत सारा प्यार और सादर नमस्कार। तो आज हम म्याऊं म्याऊं कविता पढ़ेंगे और साथ में म्याऊं म्याऊं कविता मिलकर गाएंगे भी। तो सारे बच्चे तैयार हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप म्याऊं म्याऊं से डरते हो और दुबक कर रजाई में बैठ गए हो, या फिर मम्मी के पीछे छिप गए हो और ये देखने लग गए हो, अरे मेरे कमरे में बिल्ली आ गई क्या? अरे मम्मी पहले बिल्ली देखिए, बिल्ली कहाँ है? तो बिल्ली तो बच्चों है ही नहीं, हमने केवल उसकी आवाज सुनी, म्याऊ म्याऊ। तो कविता सुनने के लिए सब तैयार है बच्चे? शाबाश, तो हम शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से, चुहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं, और यह सुनकर चुहिया भाग गई। तो ये कविता आपको कैसी लगी? तो हम एक बार और कविता को गा लेते हैं। तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चुहिया चूंटी, चुहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से, चुहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और इस तरह से चुहिया म्याऊं की आवाज सुनकर डरकर भाग गई होगी या नहीं भागी होगी? अब यह तो आप लोग बताएंगे कि अगर आपके पास कोई चुहिया हो और आप म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालें तो क्या चुहिया डरकर भाग जाएगी? तो आप ये काम कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा। तो यह बात थी सुहानी की। सुहानी एक रात सो रही थी और उसकी नाक की नोक पर एक चुहिया काट गई थी और वह इतना बिलख बिलख कर रो रही थी, मुझे तो चुहिया ने काट लिया, मुझे चुहिया ने काट लिया। और वह इतना बिलख बिलख कर रो रही थी कि रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी आ गई थी। और फिर सुहानी ने सोचा कि चुहिया को तो मुझे डराना होगा ताकि चुहिया मेरे पास दोबारा से ना आए। तो सुहानी ने क्या सोचा? सुहानी ने सोचा क्यों ना मैं म्याऊं की आवाज निकालूं, क्योंकि चुहिया बिल्ली से डरती है। तो सुहानी ने चुहिया को डराने के लिए म्याऊं की आवाज निकाली और फिर चुहिया भाग गई। अच्छा सोचिए कि अगर आप सुहानी की जगह होते तो क्या करते। बहुत सारे बच्चे तो यह कहेंगे कि अगर हम सुहानी की जगह होते तो हम भी म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाल रहे होते। कुछ बच्चे कहते कि नहीं, हम चुहिया को पकड़ने वाला पिंजरा अपने कमरे में रख देते और जब पिंजरे में लगी रोटी को चुहिया खाने आती तो खट की आवाज आती और वह पिंजरा बंद हो जाता, चुहिया उसमें फंस जाती और उसे हम बाहर छोड़ आते। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बच्चों जब हम चुहिया से खुद को आजाद कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी तो आपने बिल्ली की आवाज सुनी, बिल्ली की आवाज कैसी थी, म्याऊं म्याऊं। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे जानवर भी देखे होंगे, बहुत सारे पक्षी भी देखे होंगे। ये पक्षी कौन हो सकता है, ये तोता हो सकता है, ये कौआ हो सकता है, कोयल हो सकती है और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। ये जानवर कौन से होंगे, ये कुत्ता हो सकता है, ये घोड़ा हो सकता है, यह बकरी हो सकती है और मुर्गी और बतख की आवाज भी आपने जरूर सुनी होगी। तो सोचिए कि ये कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, आप ट्राई जरूर कीजिएगा कि ये आखिर कैसी आवाजें निकालते हैं। अच्छा बताइए कि अगर आप सुहानी की दोस्त होती तो सुहानी से क्या कहती कि इस चुहिया से निजात पाने यानी कि छुटकारा पाने का कौन सा तरीका हो सकता है। और ये भी सोचिए कि म्याऊं की आवाज सुनकर चुहिया पर क्या असर हुआ होगा, क्या चुहिया उस समय भाग गई होगी और वह फिर वापस नहीं आई होगी, या चुहिया हमेशा के लिए चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई, या चुहिया सिर्फ उस रात डर गई और फिर अगली रात वह फिर आ गई सुहानी के पास। सुहानी को चुहिया से डर लगता है क्योंकि चुहिया उसकी नाक की नोक पर काट गई थी। आपको किससे डर लगता है भाई, मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है कॉकरोच से। कॉकरोच अगर बाथरूम के अंदर है तो मैं बाथरूम के बाहर होती हूँ, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। इसलिए डर नहीं लगता कि कॉकरोच काट खाएगा क्योंकि कॉकरोच ने मुझे कभी काटा नहीं है, लेकिन उसे डर बहुत लगता है। और मुझे चुहिया से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चुहिया मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन मोटे चूहे से मुझे बहुत डर लगता है। पता है एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं काम कर रही थी, मेज पर सामान रखा था और मैं कुछ लिखने का काम कर रही थी और अक्सर मेरी मेज की दराज में बहुत सारा सामान होता है खाने पीने का, उसमें टॉफी भी मिलेंगी, उसमें चॉकलेट भी मिलेगी और उसमें बिस्किट भी मिलेंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे रात को बैठकर काम कर रही थी और तब मैंने काम करते करते अपनी मेज की दराज खोली, पता है क्या हुआ, मैं जोर से चिल्लाई और एक बहुत मोटा सा चूहा दराज में से निकलकर मेरे ऊपर गिर पड़ा। चूहा मुझसे डर गया और मैं चूहे से डर गई। उसके बाद से मैंने कानों को हाथ लगाया और मैंने कहा कि दराज के अंदर मैं कोई भी खाने पीने का सामान नहीं रखूंगी। उस रात मैंने उस दराज को एकदम खाली कर दिया और उसमें से पढ़ने लिखने का सामान था, न उसमें चॉकलेट थी, न उसमें टॉफी थी और ना ही उसमें बिस्किट थे। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि आखिर चूहे को कैसे पता चला कि इस दराज में सब कुछ है, क्योंकि खाने पीने की अपनी गंध होती है और ये चूहे बिल्ली सब जीव जंतु इस गंध को पहचान लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि चीनी के डिब्बे के पास चींटियां कैसे पहुंच जाती हैं, या चीते कैसे पहुंच जाते हैं, या उन्हें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ गुड़ का डिब्बा रखा है, गंध से पता चलता है। तो हमें इन्हें बताने की जरूरत नहीं होती है, ये सारे जीव जंतु अपने आप खाने पीने की चीजों को खोज लेते हैं। जैसे चींटी ने सुहानी की नाक को खोज लिया और जैसे चूहे ने मेरी मेज की दराज में रखी हुई चीजों को सूंघ लिया। अच्छा आप ये बताइए कि आपको जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है आप उसे डराएंगे कैसे और डराने के लिए आप करेंगे क्या। हमारी इस कविता में तो चुहिया है जिससे सुहानी को डर लगता है और सुहानी ने चुहिया को डराने के लिए म्याऊं की आवाज निकाली। मान लीजिए कि आपको कुत्ते से डर लगता है, बबो बबो और आप उसकी भौं-भौं की आवाज सुनकर डर जाते हैं, तो अब आप कुत्ते को डराने के लिए क्या करेंगे? और अगर आपको कॉकरोच से भी डर लगता है तो आप कॉकरोच को भगाने के लिए क्या करेंगे? और अगर आपको बिल्ली से डर लगता है तो बिल्ली को भगाने के लिए क्या करेंगे? तो बिल्ली, कॉकरोच, कुत्ता, इन सबको भगाने के लिए जरूरी है इन्हें डरा दिया जाए, तो ये वापस नहीं आएंगे। तो सोचिए आप अपनी तरकीब और हमारे पास लिखकर जरूर भेजिएगा। पता क्या है? पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। बस आपको इस पते पर, इस ईमेल के आईडी पर अपने अनुभव और आपने किसको कैसे डराया यह लिखकर भेज देना है। कई बार बच्चे बहुत शैतानी करते हैं और शैतानी करते करते वे एक दूसरे को डराने का भी काम करते हैं। तो एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है माला। माला को भी लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। माला किसको कैसे डराती है तो यह हम सुनते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सुहानी चूहा से डरती है। छोटी सी सुहानी उस छोटी सी चूहा से कितना डरती है। और सुहानी ने चूहा को डराने का एक नया तरीका खोजा। उसने कहा म्याऊं, और चूहा को लगा कि सचमुच की बिल्ली आ गई है, तो चूहा म्याऊं की आवाज सुनकर भाग गई। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अलग अलग चीजों से डर लगता है। किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को कुत्ते से लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, तो किसी को बंदर से डर लगता है। और पता है मुझे किससे डर लगता है? मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। लेकिन बच्चों, आपके जैसे ही और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है। सिर्फ डराने का मजा लेना उनका उद्देश्य है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो बस उन्हें डराने में बहुत मजा आता है। और हमने बचपन में भी तो यह काम बहुत किया है कि हम दरवाजे के पीछे या पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, और जब मम्मी, पापा, दादा, दादी कोई भी आता है तो हम बहू ऐसे कह के उन्हें डरा देते हैं, और जब वे डर जाते हैं तो हम खूब ताली बजाकर मजा लेते हैं। तो हम आपके साथ एक जो कहानी कहने के लिए आए हैं उसका नाम है माला की चांदी की पायल। माला भी आप बच्चों की तरह से ही कक्षा 2 में पढ़ती हैं। छोटी सी हैं, बहुत प्यारी सी हैं, नटखट है, खूब शैतानी करती हैं, और उन्हें दूसरों को डराने में बहुत मजा आता है। तो देखते हैं कि माला की चांदी की पायल कहानी में क्या कुछ है। बच्चों, आपको पता है कि ये कहानी किसने लिखी है? यह कहानी लिखी है एनी बेसेंट ने, और इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है विधु जी ने। तो आइए बच्चों, हम सुनते हैं कहानी माला की चांदी की पायल। माला आपके जैसे एक छोटी सी बच्ची है जो कक्षा 2 में पढ़ती है। माला के घर में कौन है? माला के घर में माला की मम्मी, माला के पापा, माला की नानी और माला का छोटा भाई, ये सब मिलजुल कर रहते हैं। माला के पापा अक्सर आंगन में बैठकर अपने स्कूटर को साफ करते हैं, और माला का छोटा सा भाई जो है अपनी खिलौना कार को लेकर अपने पापा की पीठ पर चलाता है, तो उसे बहुत मजा आता है, और माला चुपके चुपके यह सब देखती है। माला को दूसरों को डराने में मजा आता है, लेकिन वह दूसरों को डराती कैसे थी पता है? वे क्या कहती थी? खुश, यानी कि माला खुश कहती और बिल्ली डर के कूद जाती। हई, वह अपनी नानी को डराती। जब वे हई कहकर अपनी नानी को डराती तो नानी के हाथ से खाने के सारे बर्तन गिर जाते, और उनके चमचे में, करछी में, थाली में जो सामान होता वह जमीन पे गिर जाता। और तो और एक दिन क्या हुआ कि नानी दूध डाल रही थी बॉटल में, लेकिन माला ने पीछे से चुपके आके कहा हई, और नानी डर गई और नानी की हाथ से दूध गिर गया। माला घर के लोगों को तो क्या, वह डाके को भी नहीं छोड़ती थी। वह चुपचाप अपनी मम्मी की साड़ी को अपने मुंह के चारों तरफ लपेट लेती, उसके भीतर छुप जाती और फिर दरवाजे के पीछे से कहती बाऊ, और यह सुनकर डाकिया डर जाता। और जब डाकिया डर जाता तो उसके हाथ से चिट्ठियों का थैला छूट जाता और सारी चिट्ठियां इधर उधर बिखर जाती। फिर माला डाकी एक भैया के साथ सारी चीजों को इकट्ठा करके और झोले में डाल देती। लेकिन इसी चक्कर में पता है क्या हुआ, डाकिये का पैर माला के छोटे भाई की खिलौना कार पे पड़ गया और जोर से आवाज आई पिंग, और माला का छोटा भाई जोर से रोने लगा, मेरी कार तोड़ दी। और यह सुनके डाकिया डर गया, अरे ये क्या किया मैंने, नहीं मैंने नहीं किया, ये तो गलती से हो गया। तो गलती से क्या हुआ, गलती से डाके का पैर माला के छोटे भाई की खिलौना कार पे पड़ा और जोर से आवाज आई और उसका भाई रोने लगा। यूं माला सब किसी को सताती थी। तो पता है एक दिन माला की माँ ने क्या किया, एक दिन माला की माँ ने उसे छोटी सी डिब्बी दी। क्या बता सकते हैं कि उस डिब्बी में क्या होगा, वेरी गुड, उस डिब्बी में थी एक छोटी सी चांदी की पायल। माँ ने कहा, माला ये तुम्हारे लिए है। तो माला ने कहा, अच्छा ये मेरे लिए है। माला की माँ ने कहा, हाँ ये तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। और माला का छोटा भाई चुपके से कुर्सी के पीछे से उझक कर देख रहा था कि माँ माला के लिए क्या लेकर आई है। माला ने चांदी की पायल पहन ली और अब वह पूरे दिन उन्हें पहनकर घर में घूमती थी। माला की चांदी की पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, तो अब माला जहाँ भी जाती सबको पता चल जाता, क्योंकि घुंघरुओं की आवाज से यह पता चल जाता कि माला यही कहीं है। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई, यानी कि माला की बिल्ली को भी ये पता चल गया कि ये जो घुंघरुओं के झनकने की आवाज है यह माला की चांदी की पायल की आवाज है। तो अब माला खुश करती इससे पहले ही बिल्ली कूद जाती। छिक छिक छम, माला की हई से पहले नानी पलट गई, क्योंकि नानी को भी पता चल गया कि माला यही कहीं है। कैसे पता चला, पायल के घुंघरुओं की आवाज से। तो अब घर में हर किसी को ये पता चल जाता कि माला यहाँ पास में है, और माला खुश हई ये कहती इससे पहले सब लोग चौकन्ने हो जाते और उनमें से कोई नहीं रहता। एक दिन क्या हुआ, माला डाकिये को डराने वाली थी। वो फिर से अपनी मम्मी की साड़ी को लपेट कर अपना मुंह उसमें छुपा कर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। लेकिन वह जैसे ही चल रही थी तो आवाज आई, छिक छिक छम, माला भौ कहती इससे पहले डाकिया निकल गया। आगे क्या हुआ, आगे माला अपने छोटे भाई को डराना चाहती थी, तो वह पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। अब वह पर्दे के पीछे जा ही रही थी तो आवाज आई, छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। तो घर में अब माला से डरने वाला कोई नहीं था, न माँ न पिताजी न नानी न डाकिया न छोटा भाई। तो अब माला उदास हो गई, अब उसे मजा नहीं आ रहा था कि वह किसी को डराती इससे पहले घुंघरू की आवाज से सब चौकन्ने हो जाते और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। अब माला की हुश, माला की हई, माला की धप से कोई भी नहीं डर रहा था। तो पता है बच्चों, ऐसे में माला ने क्या किया, ऐसे में माला ने चांदी की पायल उतार दी। तो चांदी की पायल उतारने से क्या हुआ, अब माला जहाँ जाती किसी को पता ही नहीं चलता कि माला आ रही है। तो माला ने क्या किया, चांदी की पायल उतारकर अपने छोटे भाई की खिलौना गाड़ी में लगा दी। अब खिलौना गाड़ी लेकर जो छोटे से भाई हैं वे पूरे घर में घूमते। अब छन छन की आवाज आती, छिक छिक छम, छिक छिक छम, छिक छिक छम। लेकिन ये छिक छिक छम की आवाज माला की चांदी की पायल की आवाज तो है, लेकिन माला के आने की आहट नहीं है, बल्कि भाई के गाड़ी चलाने की आहट बन गई। अब वापस माला ने सबको डराना शुरू किया, नानी के पीछे से कहती बाऊ और नानी डर जाती, डाकिये से वह कुछ कहती हई और डाकिये डर जाता, और छोटे भाई के पीछे जाकर वह कहती दप, तो छोटा भाई भी डर के मारे चिल्लाने लगता। माला को अब वापस सबको डराने में बहुत मजा आने लगा। लेकिन धीरे धीरे सबको ये पता चल गया था कि माला को दूसरों को डराने की आदत है, उसे उसमें बहुत मजा आता है। तो सब लोग बहुत इंजॉय करते थे, बहुत आनंद लेते थे। और एक दिन सब ने सोचा कि हम क्यों ना मिलकर माला को डराएं। तो सबने कमरे की बत्तियां सारी बंद की और माला जैसे अंदर आई कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कौन कहां है। इतने में सबने लाइट ऑन की, लाइट जलाई और कहा हुश, और माला डर गई। लेकिन माला के डरने में वो बात नहीं थी जो माला दूसरों को डराती थी। माला बहुत अच्छे से सबको डराती थी, लेकिन कोई माला को उतने अच्छे तरीके से नहीं डरा पाया। तो ये डरने डराने का मामला तो लगा ही रहेगा। लेकिन बच्चों, मुझे मालूम है कि आप सब बच्चे बहुत बहादुर हैं। आप किसी भी दुख स्थिति से, किसी भी विपरीत स्थिति से, या कुछ अच्छा न भी हो रहा हो तो आप डरने वाले नहीं हैं। भले ही आप बिल्ली से डरते हो, भले ही आप छिपकली से डरते हो, भले ही आप चूहे से डरते हो, या फिर कुत्ते से डरते हो, या फिर मेरी तरह से कॉकरोच से डरते हो, लेकिन आप सब बहुत बहादुर हैं, वीर हैं। आप किसी से डरने वाले यूं नहीं हैं, यूं बस डरने का नाटक कर लेते हैं ताकि दूसरों को भी मजा आए। तो आपने ये सुनी कहानी माला की चांदी की पायल। इस कहानी को सुनते समय आपके मस्तिष्क में बहुत सारी तस्वीरें उभर रही होंगी कि माला डाके को कैसे डराती है, माला नानी को कैसे डराती है, माला अपने छोटे भाई को कैसे डराती है, और न जाने क्या क्या। तो आपको करना ये है कि आपने जो कहानी सुनी माला की चांदी की पायल, और आपने जो कविता सुनी म्याऊ म्याऊ, बस आपको उस पर आधारित कुछ तस्वीरें बनानी है, और उन तस्वीरों को बनाकर आप हमारे पास भेजिएगा। आप चाहें तो इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जब माला ने अपनी चांदी की पायल उतार दी तो आगे क्या हुआ होगा। क्या सब लोग वापस डरने लगे? क्या माला की माँ ने माला को चांदी की दूसरी पायल लाके दी, या फिर सभी ने मिलकर माला को खूब डांटा होगा? आखिर माला का हुआ क्या, माला के साथ क्या हुआ, और फिर माला ने अपने घर के लोगों को और डाकिये भैया को डराने के लिए कुछ नई तरकीबें सोची? तो बस ये कहानी बनाकर आप हमारे पास भेज दीजिए। आप ये भी काम कर सकते हैं कि माला बहुत छोटी सी बच्ची है, क्लास 2 में पढ़ती है आपकी तरह, तो माला दिखती कैसी होगी? तो आप सबको माला की तस्वीर बनाकर भी हमारे पास भेजनी है। अब छोटे बच्चे तो आपने बहुत सारे देखे हैं, आप खुद भी तो छोटे से बच्चे हैं, तो आपने छोटे बच्चे बहुत सारे देखे हैं, और आपने ये देखा है कि छोटे बच्चे अक्सर क्या क्या करते हैं। तो माला डराने के अलावा और क्या क्या करती होगी, उसे किन किन कामों में मजा आता होगा, और आपको किन किन कामों में मजा आता है, उसकी एक लंबी सी लिस्ट बनाकर हमारे पास भेज दीजिए। और फिर हम ये देखेंगे कि जिन बच्चों ने हमारे पास अपने मजेदार कामों की लिस्ट भेजी है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो ज्यादातर बच्चों को पसंद हैं? ज्यादातर बच्चों को क्या पसंद होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं? तो बच्चों, ज्यादातर बच्चों को क्या काम पसंद आता है, वह है खेलना। फिर उसके बाद क्या काम पसंद आता है, उसके बाद शायद उन्हें पसंद आता होगा मिठाई खाना। मिठाई का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी तो जरूर आया होगा, भाई मेरे मुंह में तो पानी आ गया। और मैंने सोचा कि जब मिठाई का जिक्र आया है तो हम क्यों ना ये भी देख लें कि आखिर मिठाई बनती कैसे है। अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग घरों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं और अलग अलग तरह की मिठाई बनती है। तो आप हमें ये बस लिख कर भेज दीजिए कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, इन सब मौकों पर, त्योहारों पर आपके घर में कौन से पकवान बनाए जाते हैं, और आपको सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है। तो बस आपको ये लिख कर भेजना है, और आप चाहें तो उसकी तस्वीर बनाकर भी हमारे पास भेज सकते हैं। अच्छा बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि जब हम किसी को डराते हैं तो उसके दिमाग पर क्या गुजरता होगा? दिल धक से रह जाता है ना? तो किसी को यूं डराना भी अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, मजे के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मजा भी उतना जितना दूसरे को नुकसान न पहुंचे। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया है तो फिर हमें उससे माफी भी मांग लेनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हम आपसे आगे से हम आपको नहीं डराएंगे। लेकिन माला जिस तरह से छोटे छोटे मजेदार तरीकों से लोगों को डराती थी, लोगों को भी मजा तो आता था और वे कई बार अभिनय भी करते थे कि वे डर गए हैं। खास तौर से माला की नानी, अक्सर माला की नानी झूठ मूठ का रूठना दिखाती थी। वो रूस जाती थी और कहती थी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी माला, आपने मुझे डरा दिया। तो माला नानी के गले में अपनी बाहें डालकर झूल जाती थी और कहती थी, मेरी प्यारी नानी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं डराऊंगी। नानी भी बहुत जल्दी मान जाती थी। इधर नानी मान गई और उधर माला का दोबारा से डराने का काम शुरू हो गया। तो बस माला की जिंदगी यूं ही गुजर रही है। वह पढ़ती है, लिखती है, खूब खेलती है, खूब बातें करती है और लोगों को तरह तरह से डराती है। दरअसल डाकिये भैया को भी डरने में बहुत मजा आता है। वे कहते हैं कि जिस दिन माला उन्हें डरा ना ले, कुछ मजा नहीं आता। तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि वे माला के घर के पास से गुजरे और माला भू कहकर उन्हें डरा दे। तो केवल माला ही है जो उन्हें भू कहकर डराती है। डाकिये को भी अच्छा लगता है और घर के सब लोगों को ये बात बहुत पसंद आती है कि माला सबके साथ कितना मजाक करती है और सबको मजा भी आता है कि माला कितनी खुश रहती है। माला की माँ भी माला के लिए अलग अलग तरह की चीजें लाती हैं। कभी वे चांदी की पायल लाती हैं, तो कभी कांच की चूड़ियां लाती हैं, तो कभी घुंघरों वाला हार लेकर आती हैं या माला लेकर आती हैं। तो माला अक्सर घुंघरों की माला को पहनकर घूमती हैं और वे अपनी मम्मी की साड़ी को लपेट लेती हैं जैसे उनकी माँ साड़ी पहनती हैं। बस माला को साड़ी पहनना आता नहीं है, माला खुद तो इतनी छोटी सी और इतनी लंबी साड़ी को वह कैसे लपेट लेती हैं और उसके पीछे उनका चेहरा, उनके हाथ पैर सब ढक जाते हैं। फिर ढूंढना पड़ता है कि माला की मम्मी की जो साड़ी है उसमें माला कहाँ है। सब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई माला कहाँ है इस साड़ी में। तो माला को अपनी मम्मी की साड़ी पहनना बहुत पसंद है। आप बच्चों को भी अपनी मम्मी पापा के कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा। तो फिर आपको क्या करना है, आप अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, खूब हंसिए, खूब हंसाइए, कहानियां सुनिए और हमें अपनी कहानियां लिखकर जरूर भेजिएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncrt@gmail.com। तो इस पते पर हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आपकी कहानियां, आपकी कविताएं, आपके खट्टे मीठे रोचक अनुभव और आपके बनाए हुए चित्र, बस हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा तो हमें हमेशा रहती है। तो आप ये काम कीजिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और तकनीकी सहायक सौम्या मलिक। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
1: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
0: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
1: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
0: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
1: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
0: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
1: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
0: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने चक्रवातों के बारे में जाना कि चक्रवात क्या है, कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना।

0: विवेक विवेक ये सृष्टि और मानव दोनों कहाँ गए? इन दोनों काफी देर से भूख लगी का शोर मचा रहे थे।
1: और अब खाना तैयार है तो इन दोनों का पता ही नहीं।
2: मम्मी शायद ये दोनों छत पर होंगे।
0: लगता है दोनों भाई बहन पतंग उड़ा रहे हैं।
1: विवेक जाओ उन्हें खाने के लिए बुला लो।
0: जल्दी जा भाई, मैं भूख लगी हुई है।
3: मानव
0: तुम भी ना खाने के लिए।
1: मैंने थोड़ी ना भेजा
3: है। मानव तुम भी ना तैयार है, नीचे आ जाओ जल्दी।
4: अभी आ रहे हैं।
3: लो आ रहे हैं अभी।
1: लो हम आ गए पापा।
0: अरे बच्चों जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है।
4: अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए हैं,
1: साथ में हलवा भी है मानव,
5: और नारियल की चटनी भी है।
0: बच्चों शुरू हो जाओ जल्दी से।
1: चलो
0: अरे भाई मुझे ये पास करो।
1: हाँ ये लो हाँ। लो बेटा तुम भी
2: खा। मम्मी चटनी का स्वाद अजीब सा क्यों लग रहा है?
4: मुझे लगता है कि मम्मी ना नमक डालना भूल गई।
0: हाँ बच्चों, नमक नहीं होने के कारण ही सचमुच खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है।
1: मम्मी क्या नमक खत्म हो गया है?
2: सृष्टि हुआ नहीं तो जल्दी हो जाएगा। हा? तुम्हें पता ही होगा अपना मानव थाली में हमेशा अलग से नमक जरूर लेता है
1: और हमेशा फिर थाली में छोड़ भी देता है। हाँ घर में सबसे ज्यादा नमक मानव ही व्यर्थ करता है।
4: अरे भाई नमक जैसी सस्ती चीज के लिए आप मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो? पापा की सैलरी का सबसे कम हिस्सा इस नमक पर ही तो खर्च होता है।
1: अरे नमक के लिए तुम लोग मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान करते हो?
2: मम्मी ये नमक ही तो था जिसने 1930 में भारत में ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था। इस नमक में बड़ी ताकत है।
4: वो कैसे भैया?
2: मानव सन 1930 में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था।
1: भैया एक बात बताओ, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ने

0: ये ले।
1: हाँ मम्मी
2: अच्छा लग रहा है।
0: अब अच्छा है।
3: नमक डालने से तो चटनी में स्वाद आ गया।
0: लेकिन भैया ये नमक इतना सस्ता क्यों है?
4: मानव तेरा विचार क्या नमक को महंगा बनाने का है?
0: अरे नहीं दीदी, मेरा मतलब है कि इतना नमक आता कहाँ से है?
4: अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता तुझे? नमक समुद्री जल से बनता है।
3: मानव इतना तो पता होना चाहिए था तुझे, समुद्र ही नमक का सबसे बड़ा स्रोत है।
0: पर पुराने समय में जहाँ लोग समुद्र के पास नहीं रहते थे, उन लोगों को नमक कहाँ से मिलता था?
4: उन्हें नमक खरीदना पड़ता था, वो भी मुंह मांगी कीमत पर।
0: तब तो उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नमक पर ही खर्च करना पड़ता होगा।
4: अरे पापा ने भी बताया तो, रोम में तो वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में ही दिया जाता था।
5: बच्चों बच्चों बच्चों, नमकीन बातें बहुत हुई, अब हलवा खाओ। हलवा हमें भी खिलाओ भाई।
6: स्वाद स्वाद में देखो, ज्यादा ना हो जाए।
4: मम्मा
3: लो ना पापा, आप लोग
6: खाए चले जा रहे।
0: अरे पापा आज हमें घूमने भी तो जाना है ना।
5: अरे जाएंगे सही, पहले हलवा तो खा ले हम। अरे तब तक तुम लोग ये तो तय करो कि जाना कहाँ है।
3: पापा समुद्र के नमक से मुझे याद आया, क्यों ना हम समुद्र का खजाना नामक प्रदर्शनी देखने चले।
4: भैया कहीं तुम महासागर विकास विभाग की चलती फिरती प्रदर्शनी की बात तो नहीं कर रहे?
3: उसी की तो बात कर रहा हूँ सृष्टि, इन दिनों ये प्रदर्शनी हमारे शहर में आई हुई है।
0: अरे वाह पापा, तो आज चलते हैं समुद्र का खजाना देखने के लिए।
5: हाँ जरूर चलेंगे बच्चों, जरूर। बस मैं ये हलवा खा लूं, फिर थोड़ी सी एक प्यारी सी छोटी सी नींद ले लूं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है
0: ठीक है चलो।
4: यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: समुद्र का खजाना देखने लोग भी तो बड़ी संख्या में आए हैं।
6: यहाँ तो चार गैलरीज हैं। पहले किस में चले?
0: मम्मी पहले हम चलते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र के संसाधनों की जानकारी लेने, ठीक है?
5: हाँ भाई, तट से होते हुए ही गहरे समुद्र में जाएंगे।
0: अरे देखो यहाँ तो नदी मुख, समुद्री झील, बालू के टीले और कच्छ यानी मैंग्रोव वनस्पति के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
7: मानव समुद्र तटीय क्षेत्र से भारी मात्रा में रेत और बालू प्राप्त होती है और यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं जैसे थोरियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह।
6: रेत और बालू तो सही, पर मैंग्रोव वनस्पति?
3: मैं बताता हूँ मम्मी, प्रकृति ने इन वनस्पतियों को खारे पानी में उगने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है।
4: खारे पानी में उगने के अलावा मैंग्रोव के बीज में पेड़ पर ही अंकुरित होने का गुण भी पाया जाता है।
7: बच्चों प्रकृति की अनोखी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं।
4: आगे देखते हैं और क्या क्या है समुद्र में।
3: आइए चलो
0: भैया, यहाँ ये सुनामी का चित्र क्यों दिया गया है?
3: मानव इतना भी नहीं पता कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी या समुद्री लहरों और चक्रवात के प्रभाव को कम कर देती हैं। तटीय क्षेत्रों के लिए ये वनस्पतियाँ प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं।
0: तो इसका मतलब मैंग्रोव सुनामी के तट पर पहुंचने से पहले ही उसके वेग को कम कर देती है।
4: हाँ मानव, मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी जैसी आपदा से बचाने के साथ और भी अनेक कामों में उपयोगी हैं, जैसे ये जलाने के लिए और फर्नीचर निर्माण में भी उपयोगी हैं।
3: और मैंग्रोव वनों में अनेक वन्य जीव जंतु और पक्षी भी रहते हैं।
7: बच्चों भारत के सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र में बाघों की अच्छी खासी संख्या है।
4: इन वनों से तो दूर ही रहना मानव।
0: क्यों?
4: नहीं तो पता चले कि बहादुर मानव बाघ के सामने आने पर भीगी बिल्ली बन गया।
3: चलो आगे देखो।
6: ये देखो बच्चों यहाँ, ये देखो यहाँ समुद्री पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया चित्रों के माध्यम से बताई गई है। और ये देखो पहले समुद्री जल के वाष्पन से इसके रवे या डल्ले बनते हैं।
0: अरे वाह, ये तो नमक के खेत लग रहे हैं। और ये नमक जैसे मिश्री की डली हो।
4: लेकिन ये मिश्री नहीं नमक है।
3: और मानव इन्हीं रवों को पीस कर तो नमक बनाया जाता है।
7: बच्चों आजकल नमक बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में इन रवों को साफ करके तथा पीस कर बनाया जाता है।
6: नमक बनाने के साथ ही अब तो अधिकतर पैकिंग के दौरान ही इसमें आयोडीन भी मिला दिया जाता है।
0: आयोडीन?
4: मानव आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक तत्व है। समुद्र की

0: पत्तियाँ भी आयोडीन का एक मुख्य स्रोत हैं।
1: बच्चों बच्चों आगे चलो, अभी बहुत कुछ देखना है।
0: हाँ, चलो चलो चलो चलो।
2: यहाँ तो समुद्र की लवणता के बारे में बताया गया
0: है। मुझे पता है कि समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति लीटर होती है।
1: हाँ, वेरी गुड। अब बच्चों, सागर की लवणता में अकेले सोडियम क्लोराइड यानी नमक का योगदान ही करीब 80% है।
2: और जानते हो मानव, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्र के पानी में कई और भी लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।
0: पापा, अब समुद्र के सजीव संसाधनों की प्रदर्शनी देख लेते हैं।
3: अरे वाह, ये देखो, ये रंग बिरंगी मछलियों के चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं।
4: बेटा, समुद्र में मछलियों का संसार इन चित्रों से भी अधिक सुंदर है।
3: इनसे भी सुंदर है?
2: हाँ मानव, समुद्र में तो मछलियों की हजारों प्रजातियां रहती हैं।
1: और बच्चों पता है ना, मछलियां प्रोटीन का भंडार होती हैं। पूरे संसार में अधिकतर लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता समुद्री जीवों से ही पूरी होती है।
0: अच्छा ये बताओ मानव, धरती का विशालकाय जीव कौन सा है?
3: ब्लू व्हेल।
0: अरे वाह, तुझे तो पता है।
2: अरे सृष्टि, सामने व्हेल के बारे में जो जानकारी दी गई है, मानव ने उससे पढ़कर उत्तर दिया है तुम्हें।
0: तभी तो मैं कहूँ, हमारा बुद्धूराम समझदार कैसे हो गया।
3: अच्छा
0: पापा, मैंने क्या किया?
2: पापा आगे चलते हैं, अभी तो देखना है कि क्या क्या बाकी है समुद्र के खजाने में।
1: चलो
4: बेटा, समुद्र को धरती का भंडार गृह भी कहते हैं। यहाँ वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समाई हुई है, जो सभी समुद्री पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है।
3: अरे ये समुद्र में जंगल कहाँ से आया?
0: मानव, ये जंगल नहीं, समुद्री जीव पोलिप या मूंगे की चट्टानें हैं।
1: इन्हें कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है।
4: बच्चों, ये प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
2: मानव जानते हो, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में विभिन्न रंगों वाले मूंगे, सीपी और शंख तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में जैव विविधता भी पर्याप्त होती है। उत्पादन क्षमता के आधार पर इनकी तुलना जमीन के वर्षा वनों से की जाती है।
1: हाँ बच्चों, केकड़े, मोलस्क, स्पंज और बहुत सुंदर सी मछलियों सहित प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में लाखों समुद्री जीव जंतु निवास करते हैं।
4: और इस क्षेत्र से अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व भी मिलते हैं।
3: आज मुझे समझ में आया कि जमीन से अधिक जीव तो समुद्र में बसे हैं।
2: बिल्कुल ठीक समझे मानव तुम, समुद्र असंख्य जीवों का घर है। और ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था।
1: और बच्चों, समुद्री क्षेत्र में मछली उद्योग, झींगा उद्योग और केकड़ा उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार और भोजन भी मिल रहा है।
3: पापा, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमको भी कुछ खा लेना चाहिए?
4: अरे हाँ, बच्चों को भूख लगाई होगी, अब क्यों ना हम बाहर ही कुछ खाएं?
1: हाँ। वसुधा तुम भी।
0: लगता है मानव समुद्र का खजाना देखने नहीं बल्कि बाहर खाना खाने के लालच में आया है।
1: मानव, खाने के बाद अब हम प्रदर्शनी में समुद्र के निर्जीव खजाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो
0: चलो चलो चलते हैं।
3: अरे वाह, इस चित्र में तो समुद्र में कहीं पहाड़ तो कहीं गहरी खाई दिखाई गई है। समुद्र में पहाड़?
2: हाँ मानव, समुद्र भी धरती की तरह ऊंचा नीचा है।
1: और समुद्र की औसत गहराई लगभग 3,800 मीटर है।
4: और तुम्हें पता है बच्चों, समुद्र की इस गहराई में अनेक धात्विक खजाने दबे हुए हैं।
3: कौन से धात्विक खजाने दबे हुए हैं?
0: मानव, मम्मी का मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या बहुधात्विक पिंडिका से है।
2: यहाँ बहुधात्विक पिंडिका के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
1: लिखा है कि भारत को इस दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से मध्य हिंद महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला है। वर्ष 2002 तक भारत ने 2500 से अधिक स्थानों से 250 टन से भी अधिक बहुधात्विक पिंडिकाएं इकट्ठी की हैं। जिनसे हमें कई बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं।
2: और आगे बढ़ो मानव, भारत के संरक्षित समुद्री क्षेत्र से प्राप्त पिंडिकाओं में तांबा, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज के करीबन 6.5 मिलियन टन अनुमानित भंडार जमा है।
3: दीदी, समुद्र के इस खजाने में सोना चांदी नहीं है क्या?
0: मानव, समुद्र के पानी में सोने और चांदी के अलावा ब्रोमीन, लोहा, कैल्शियम और सल्फेट जैसे अनेक तत्व घुले हैं।
3: इसका मतलब समुद्र से नमक ही नहीं, कीमती धातुएं भी मिलती हैं।
2: और समुद्र से हमें मोती भी तो मिलते हैं।
3: तब तो इस चित्र प्रदर्शनी को नाम सही दिया गया है, समुद्र का खजाना।
5: आओ देखिए, आगे देखिए।
0: तो पापा, अभी और क्या क्या है समुद्र के खजाने में?
1: अरे बेटा, समुद्र के भंडार में हाइड्रोकार्बन स्रोत भी महत्वपूर्ण है।
2: काला सोना कहलाने वाला पेट्रोलियम भी तो समुद्र से ही निकाला जाता है।
3: लेकिन समुद्र में पेट्रोल कहाँ से आता है?
4: मानव, देखो इस चित्र में छोटे समुद्री जीवों और वनस्पतियों को सागर तल में जमा होते दिखाया गया है।
2: और फिर उच्च दाब और ताप से ये जीव हजारों वर्षों में हाइड्रोकार्बन पदार्थ में बदल जाते हैं,
0: जिनसे हमें प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोम और वैसलीन और न जाने क्या क्या मिलता है।
3: अरे वाह, समुद्र से इतने सारे हाइड्रोकार्बन पदार्थ निकलते हैं।
0: मानव, समुद्र को धरती का भंडार गृह ऐसे ही थोड़ा कहा गया है, यहाँ तो असीम प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई है।
1: आधी प्रदर्शनी तो देख ली बच्चों, अब क्या विचार है?
2: पापा, कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमकर आते हैं?
3: नहीं नहीं, घूमेंगे नहीं, पार्क में बैठेंगे। पर पहले आइए, सभी का स्वागत है प्रदर्शनी के समुद्री ऊर्जा संसाधन वाले इस हिस्से में।
0: मानव, क्या पिछले जन्म में गाइड थे?
3: फिर से।
1: बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ अच्छी जानकारी दी है। लिखा है, भारत के पास 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें उपस्थित सभी संसाधनों का दोहन किया जा सकता है।
0: पापा, ज्वारीय ऊर्जा भी तो समुद्र के खजाने का एक मोती है।
1: हाँ बच्चों, विश्व के अनेक देशों में समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है।
3: तो क्या भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है?
1: हाँ?
0: भारत की अनुमानित ज्वारीय ऊर्जा क्षमता करीब 8000 से 9000 मेगावाट है।
4: और बच्चों, इस चित्र में तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा को दर्शाया गया है। देखो,
3: ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से ही संबंधित है ना दीदी?
0: हाँ मानव, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र के तटीय जल में निश्चित समय में उतार चढ़ाव होते हैं,
4: और इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। और बच्चों, यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे ज्वार भाटा की घटना से समुद्री जल के उतार चढ़ाव से टरबाइन को घुमाकर विद्युत पैदा की जाती है।
1: देख रहे हो ना बेटा, भारत में भी सुंदरवन क्षेत्र में करीब 3.5 मेगावाट के ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना बन रही है।
2: बहुत अच्छी बात है पापा। अब आगे चलें, आगे देखते हैं सागर में और क्या क्या ऊर्जा स्रोत छुपे हैं।
1: अरे ये देखो बच्चों, समुद्री जलतापी ऊर्जा, जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी कहा जाता है, ये देखो दिखाया।
2: मानव, इस सिलसिले में सबसे पहला विचार किसका था?
3: मेरा तो नहीं था।
2: मैं बताता हूँ, इस तरह ऊर्जा प्राप्त करने के विचार को सर्वप्रथम 1881 में एक फ्रेंच इंजीनियर ने रखा था।
4: इसमें ऊर्जा के उत्पादन का सिद्धांत समुद्री जल की विभिन्न परतों के तापमान के अंतर में छिपा है।
3: ये तो मैं भी जानता हूँ कि सूर्य की किरणों से समुद्री जल की ऊपरी परत अधिक गर्म हो जाती है।
0: हाँ मानव, समुद्री सतह के नीचे जल का ताप कम होता जाता है।
1: हाँ, और इसी सिद्धांत पर 1970 में जापान के हवाई द्वीप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई।
2: लेकिन इस विधि में ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्री जल में न्यूनतम तापमान अंतर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
3: लगता है भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्र भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा।
4: हाँ मानव, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति पर ये अक्षय स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: अरे, अभी समुद्र के ऊर्जा स्रोत खत्म नहीं हुए, आगे भी तो है। चलो चलो देखते हैं।
1: अरे वाह, देखो मानव, यहाँ देखो, यहाँ समुद्री धाराओं और तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से भी विद्युत निर्माण की जानकारी दी गई है।
2: समुद्री जल की लवणता में भिन्नता से भी ऊर्जा उत्पादन के बारे में इस चित्र में बताया गया है। देखो मानव।
3: हाँ, और हमारी टीचर ने भी बताया था
6: कि विश्व के सभी समुद्रों में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
4: वाह शाबाश बेटा, तू जरूर हमारा नाम रोशन करेगा एक दिन।
0: रोशनी करेगा मम्मी, पर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर।
1: अरे बेटा तू बहुत तंगड़ी।
4: लगता है हम प्रदर्शनी के आखिरी हिस्से में हैं।
1: तुमने सांस तो बहुत लंबी ली, ऐसा लगता है थक गई हो तुम वसुधा। देखो यहाँ चित्रों में गैस हाइड्रेट के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि हाइड्रेट की खोज महान वैज्ञानिक हम्पी देवी ने सन 1811 में की।
2: वैसे प्रकृति में हाइड्रेट तो अनेक रूपों में मिलते हैं, लेकिन समुद्री तलछटों में पाए जाने वाले मीथेन हाइड्रेट भविष्य में ऊर्जा के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।
4: और यहाँ लिखा है कि समुद्र में हाइड्रेट की अनुमानित मात्रा कुल जीवाश्म ईंधन की मात्रा से दुगनी है।
0: और इनकी खोज सर्वप्रथम 1980 में की गई थी। आने वाले समय के लिए हाइड्रेट क्षेत्रों को ऊर्जा भंडार के रूप में देखा जा रहा है।
6: भैया अभी तक कितने गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है?
2: मानव अभी तक विश्व में 77 गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: और देखो यहाँ इस लेख में समुद्र में इन स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है।
2: देखो यहाँ वेधन या ड्रिलिंग और पनडुब्बियों की जानकारी दी गई है, जो समुद्री खजानों यानी समुद्र के संसाधनों की खोज और शोध करते हैं।
0: भैया भारत की सागर कन्या यान भी तो ऐसा ही काम कर रही है।
2: हाँ सृष्टि बिल्कुल ठीक, सागर कन्या समुद्री क्षेत्र में खोज व अन्वेषण का काम भी करती है। ये समुद्र विज्ञान से संबंधित चलती फिरती प्रयोगशाला है।
1: भाई अब तो शाम हो गई, अब घर चलें।
4: चलते हैं।
6: मम्मी आज हमने सागर के खजाने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। मुझे तो लगता था कि समुद्र से केवल नमक ही मिलता है।
2: शुक्र है तुम्हें इतना तो पता था।
0: बाहर तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ कितना मजा आ रहा है।
2: और ये वर्षा भी तो समुद्र के कारण ही मिलती है।
1: हाँ बच्चों, जब सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तब बादल बनते हैं।
2: और ये बादल हवा के बहाव के साथ विभिन्न स्थानों पर वर्षा करते हैं।
6: और हवाएं भी कितनी तरह की होती है ना, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाएं, जेट स्ट्रीम आदि।
2: मानव जेट हवाएं वायुयानों को उड़ने में मददगार हैं, और व्यापारिक हवाएं समुद्र में पानी के जहाजों को गति करने में सहायक होती हैं।
6: भैया हवाओं के चलने से हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान भी तो आते हैं ना।
4: मानव हवाएं केवल तूफान ही पैदा नहीं करती, इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है।
6: बिजली और वो भी हवाओं से? ऐसा शायद मैंने कहीं पढ़ा है।
2: सच में पढ़ा है तुमने?
6: जी हाँ पढ़ा है।
2: अच्छा। मानव हाल ही के दिनों में पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनकर उभर रही है। इसमें हवा की शक्ति से टर्बाइनों को घुमाकर बिजली बनाई जाती है।
4: वैसे भी मानव बेटा वायुमंडल और समुद्र तो हमारी धरती पर जीवन की निशानी है।
2: धरती का मौसम भी तो वायुमंडल और समुद्री प्रक्रियाओं पर काफी हद तक निर्भर होता है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की देन हुआ ना।
1: हाँ। और बच्चों आजकल कई देशों में मौसम पूर्वानुमान तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय बन रहा है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की ही देन है।
4: अरे अरे बच्चों, तुमने बारिश की बात की थी ना, देखो तो अब बिन मौसम ही बरसात होने लगी है।
6: बारिश।
0: मानव तू सुबह से नहाया नहीं ना, इसीलिए तुझे नहलाने के लिए बारिश हो रही है। चलो
6: लेकिन मम्मी मेरी थाली में नमक मत रखना।
0: हा? क्या हुआ मानव, पहले तुम थाली में चम्मच भरकर नमक रखने को कहते थे
2: और उसे वैसे ही छोड़ देते थे।
1: अरे बेटा आज कहीं तुमने किसी से ये तो नहीं सुन लिया कि जितना नमक बर्बाद करोगे अगले जन्म में उतना ही आँखों की पलकों से उठाना पड़ेगा।
4: है? नहीं जी, मेरा बेटा ऐसी रूढ़ियों को थोड़ा ही मानता है।
1: तो अच्छा नहीं मानता तो।
0: तो फिर क्या बात है, आज मानव नमक की कद्र कैसे करने लग गया?
4: जरूर इस बात का संबंध समुद्र के खजाने वाली प्रदर्शनी से है।
1: ओ, क्यों मानव, क्या यह बात सही है?
6: हाँ पापा, आज प्रदर्शनी देखकर मुझे समझ आ गया कि प्रत्येक तत्व चाहे वो नमक हो या हीरे मोती, प्रकृति में सभी की अहमियत है। इसीलिए हमें पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ही करना चाहिए, क्योंकि इनके उचित उपयोग में ही हम सबकी भलाई है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हमारा मानव तो प्रकृति के संसाधनों के उचित उपयोग की बात समझ गया। अब जल्द ही सभी मानव इस बात को समझ जाएं तो पृथ्वी पर जीवन सदा मुस्कुराता रहेगा।
6: क्या बात है, क्या पर बात पापा है? मैं तो तभी मुस्कुराऊंगा जब मैं खाना खाऊंगा। तो शुरू करें।
7: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी सुन रहे थे, समुद्र का खजाना।
8: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन

नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और खास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं, हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं, इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: mixing in the house.
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड

डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
3: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
2: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
3: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
2: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
3: पूरी बांह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहने
2: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
3: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
2: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
3: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
2: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं
3: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
2: याद रखना, बुखार में देरी
3: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
2: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: नवी नवी आई भी बचन दी गड़ शहर रख

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: गगन खोखरी फतेह।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, और इसकी वजह से

में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

तू जाने है कहां ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो संग बाय लकी अली कंपोजर्स माइकी मैक्लेरी और सूरज कुलवडी लिरिसिस्ट कौसर मुनीर तू जाने है कहां सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
5: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश
2: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई कोट बड़ी पहनती हुंदी जे, फिर ना क्यों दस्या नहीं, ते मुड़ के जे कितने मेरे वांगू फड़े गए ना, ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी, मैं तो ट्यूशन बारे पूछना आया सी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुन शारदा 90.8 FM
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 7790 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
3: Aaj main bara appa ko kaat kar pure ghar mein

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब होते

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी

फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: चन चन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
5: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
4: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
8: बिल्कुल सोचा है पापा।
7: क्या सोचा है?
8: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
7: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
8: जी पापा।
7: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
8: हाँ पापा बिल्कुल।
9: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।